0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: तू जो है आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: महर्षि उड़िया बाबा को भी एक उपासक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी मन कैसे रुके। तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है? नियम तो परमात्मा देखता है, हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है, भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता।
1: हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है। तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जब महान है, उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। जब माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला, जब धर्माचरण है, धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं, धर्म को। हमारा कर्तव्य क्या? प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में
0: बहुत दुर्दशा हो रही है।
1: दुर्दशा हो रही क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी। हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है, वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है, और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है, तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है, धर्म व्यवस्था ठीक है, तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं। तो फिर दूसरी बहन के साथ किया है। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे, और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की है, तो आपका पक्ष बनता है। पर ये ज्ञान कहां मिलेगा? बिना अध्यात्म के ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है, तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए हैं उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे, कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। इतना जानते हो ये बिजली है, ये दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उसे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोले? बोले झूठ के बिना धंधा नहीं चलता, नहीं ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे हैं, बढ़िया है। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे हैं, आपको पता है तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रख रहा है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना, लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है। वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के, अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले, और थोड़ा भी भजन होगा वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा, अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले यह था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, आज इसकी कोई परवाह नहीं। तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है, और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर, अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा कब जाना है कुछ पता ले, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो हमारे लिए कर्तव्य। आज प्रायः धन प्रधान बुद्धि होने के कारण कर्तव्य स्वभाव हो रहा है। एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जो गुरु पद में बैठा है उसका क्या कर्तव्य है? वो अपने कर्तव्य को भूला हुआ है। भला छोटे छोटे विद्यार्थियों को, जिनकी नींव पूरे राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में ये बन सकते हैं, अगर उनको हम सही शिक्षा नहीं दी तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उनको हम गलत सपोर्ट कर दिए तो उनका पूरा जीवन बर्बाद, क्योंकि नया जीवन है। और जगह जगह अपने अपने कर्तव्यों का यदि पालन किया जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए, लेकिन कर्तव्यहीनता आ रही, कोई अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। तो यही बात महापुरुष जनों को दुख लगता है कि अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जप करें तो सब सुखी हो जाए। सुख सब चाहते हैं और आचरण दुख वाले करते, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुख मिल रहा है। सच्ची मानना वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा, और धर्म पूर्वक 100 रुपया लाओगे और 4-5 परिवार के बैठ के नमक रोटी खाओगे, आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। पर ये बात समझ में नहीं आती है, तो ये वृत्ति अगर छोड़ी ना जाएगी तो कुछ भी कर लो, कहीं भी दान पुण्य कर लो, लाभ नहीं मिलेगा। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से। अगर आप मेहनत से कमाए हो ना, 10 रुपया दे दोगे ना तो 10 रुपये का वो आटा लाके अगर 2 रोटी खाएगा तो खूब वजन होगा। और आप 1 लाख रुपया बेईमानी कर रख दोगे ना तो बैठे बैठे वो गंदा ही सोचेगा, वजन ले होगा। उसका गंदा सोचना और आपका गंदा करना दोनों मिल करके, उसके कारण भी तो आप बने ना, तो आपका ही पतन हो जाएगा। उसको तो भगवान बचा लेंगे क्योंकि भगवान की शरण में है। तो मुझे लगता है अधर्म के धन से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता, तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी हमको लाभ प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर मतलब ये चर्चा होती है, अगर आप लोग इसको धारण कर ले तो निहाल हो जाएंगे। सच्ची कह रहे, ये जो बातें हैं ये बहुत सुंदर जीवन को पुष्ट करने वाली है, पर आप धारण कर लें तो बात है। नहीं नहीं तो जैसे लाभ दिखाई दे रहा 50,000, तभी बातें भूल जाओगे, ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हे यार बहुत बढ़िया काम घर में आएगा, पर हमारी ये बात ध्यान रखना, 50,000 घर में अशांति पैदा कर देगा। सच्ची मानना, आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे हैं, और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकली नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठा के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ए ऐसे जलना चाहते हो या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छोटे हो, फिर दाह संस्कार हो ऐसे, ये सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते ही जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए। क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। हे ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब कर रहा है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतरयामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही, कलिकाल है ना, कि ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सच, धोखे में मत रहना, अध्यात्म में है। जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में है जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा, लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238 7478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।

आया था भार्या सीता के साथ पर्ण कुटी में निवास करते हुए श्री राम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरापान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में ये आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल हो उठते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67600।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा।

0: सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-93।
4: मैंने

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो

0: अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-94-94-53
2: और 9097-61-60-02।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 8470103092 या 9765-65750।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। पिकअप चालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1,00,000 रुपए की लूट। बारात में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई समीक्षा बैठक। और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का हुआ स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। सबसे पहले गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के स्थानांतरण की खबर आई। बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने जिला पदाधिकारी को यहां से ट्रांसफर कर दिया और इनके जगह अब गोपालगंज के नए जिलाधिकारी समीर सौरभ को बनाया गया है। जल्द ही समीर सौरभ गोपालगंज की कमान संभालेंगे और जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा समीर सौरभ को गोपालगंज का चार्ज देने के बाद यहां से अपने अगले पदस्थापन वाले स्थान पर रवाना होंगे। विजयपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर मोड़ के पास एक पिकअप चालक को अज्ञात आधा दर्जन अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल पिकअप चालक की गाड़ी से अपराधियों ने 1,00,000 रुपए लूट लिए। घायल पिकअप चालक की पहचान उत्तर प्रदेश देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के कांधे छापर गाँव निवासी 25 वर्षीय सैनुल्लाह शेख पिता कमरुद्दीन शेख बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर घायल सैनुल्लाह शेख ने बताया कि वह देवरिया से पिकअप वाहन लेकर बैकुंठपुर विजयपुर होते हुए सिवान जा रहा था। उसके पास आम खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए नगद थे। महेशपुर गांव के पास जैसे ही वह सड़क के पास ब्रेकर के नजदीक पहुंचा तो सामने से आ रही एक चरपहिया गाड़ी ने उसे रोकने का इशारा किया। संदिग्ध गतिविधि देखकर चालक को शक हुआ और उसने वाहन मोड़कर वापस जाने का प्रयास किया, तभी उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। इसी बीच चरपहिया वाहन में सवार लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने बिना कुछ पूछे चालक पर गोली चला दी। गोली उसके गर्दन के पिछले हिस्से में लगी जिससे वह स्टेयरिंग पर ही गिर पड़ा। इसके बाद अपराधी मृत समझकर घायल चालक को वहीं छोड़ दिए और उसकी गाड़ी में रखा 1,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद वह किसी तरह वाहन से बाहर निकला और पास स्थित काली मंदिर के पास पहुंच गया। वहां स्थानीय लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई और गंभीर स्थिति में लोगों की मदद से इसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगाल रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा गांव में एक शादी समारोह के दौरान थर्ड जेंडर नर्तकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के सीसवा निवासी सोनू गोण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महेंद्र कुशवाहा के यहाँ शादी समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान फरमाइशी गीत बजाने को लेकर गाँव के 3 युवकों और थर्ड जेंडर नर्तकी के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नर्तकी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान किसी एक ने उसके पेट में गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें 3 लोगों की पहचान भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव जैसे ही सुबह लोगों ने देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया। मृतक सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव रफी गांव का रहने वाला अमानुल्लाह का पुत्र शोहरत अली उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि शोहरत अली बचपन से ही अपने मामा के घर नवादा में ही रहता था। परिजनों के अनुसार शोहरत करीब 15 दिन पहले ही विदेश से अपने घर लौटा था और विदेश की कमाई की रकम से वह भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने मामा के घर के पास ही जमीन खरीदना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने एक व्यक्ति के जमीन का सौदा किया और अग्रिम राशि के तौर पर 7,00,000 रुपए भी दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद संबंधित व्यक्ति लगातार जमीन की रजिस्ट्री डाल रहा था। जब शोहरत ने रजिस्ट्री कराने या अपनी राशि वापस करने का दबाव बनाया तो उसे न तो जमीन मिली और न ही उसके पैसे लौटाए गए। परिजनों का कहना है कि इसी से आहत होकर वह काफी परेशान चल रहा था। हालांकि पुलिस युवक के मौत के कारणों को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच होगी। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान स्वच्छ मिशन 2.0 के सफल क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी नगर निकायों में स्वच्छता से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का चयन जल्द से जल्द किया जाएगा। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में कटिया थाना क्षेत्र के चिंटू कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज था और यह फरार चल रहा था, तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर उत्पाद विभाग की कोर्ट में पेशी के लिए दो अपराधियों को पुलिस लेकर जा रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने लगे। इसमें एक अपराधी ने हथकड़ी

0: की सरकार कर मोनिया चौक की तरफ भागने का रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि उधर भीड़ भाड़ होने की वजह से वह अपराधी भागने में सफल भी हो गया। दूसरा अपराधी पोस्ट ऑफिस मोड़ की तरफ भाग रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। पुलिस की इस चूक से अपराधियों को कोर्ट में लाने वाले पुलिस कर्मियों पर फटकार भी लगी है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा नोनिया टोली गांव के पास छठ घाट पर पुलिस ने राजा कुमार पांडे और विश्वजीत कुंवर को 90-90 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के पास मोटरसाइकिल भी थी, उसे भी जब्त किया गया था और दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेशी के लिए गोपालगंज लाया था। इसी बीच दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिनमें एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी राजा कुमार पांडे है और विश्वजीत कुंवर अपनी हथकड़ी सरका कर फरार हो गया है। पुलिस अब दोबारा इसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। माझा थाना की पुलिस ने एक चोरी के कांड का उद्भेदन किया है और चोरी के सामान के साथ तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरी कांड में नामजद अभियुक्त विकास कुमार पिता नागेंद्र शाह, लालू शर्मा पिता परमानंद शर्मा एवं हिमांशु पासवान पिता सुरेंद्र माझी, ये सभी श्री रामपुर थाना माझा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी का मोटर और कई सामान पुलिस ने बरामद भी किया है। पिछले 17 जून को कटिया थाना क्षेत्र के डेरवा झरही नदी में नहाने के दौरान एक बच्चा लापता हो गया था। घटना के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। आज पुलिस ने इस बच्चे के पार्थिव शरीर को नदी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर फुलोरिया के अमवा घाट के पास से शव को पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 17 जून को नहाने के दौरान यह बच्चा गायब हो गया था। यह बच्चा इसी गांव के मिथिलेश यादव का 7 वर्षीय पुत्र अंगद यादव था। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और परिजन घटना के बाद से ही शोक में डूबे हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान, स्वच्छ मिट्टी सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी पुलिस ने कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया गया। आज के इस कार्यक्रम में कुल 47 किसानों ने भाग लिया, जिसमें 32 पुरुष और 15 महिला किसान का नाम शामिल है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पिकअप चालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1,00,000 रुपए की लूट। बारात में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई समीक्षा बैठक और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का हुआ स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99

0: 5369 पे।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-0975-6575।
11: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और सेहत सही लाभकारी के कार्यक्रम के साथ। आज हमारे साथ है रानू सिंह जी, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की RCH डिपार्टमेंट की इंचार्ज है और फैमिली वेलफेयर कम्युनिटी की चेयरपर्सन भी है, और फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ये बात करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
12: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हम आज स्वागत करते हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रानू सिंह जी का। डॉक्टर रानू सिंह एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के RCH डिपार्टमेंट की इंचार्ज भी हैं। वो फैमिली वेलफेयर कमिटी की चेयरपर्सन भी है, जो पटना ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी का एक हिस्सा है। इनके बारे एक और जानकारी हम श्रोताओं को देना चाहेंगे कि ये भारत सरकार की एक पायलट योजना है इम्प्लिनॉन, जिसकी ये बिहार में मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो डॉक्टर रानू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में फिर से, और हम मुद्दे की बात आज शुरुआत करते हैं सवाल से। और हमारा सवाल आपसे सबसे पहले ये रहेगा कि क्या एक विचार कि हर बच्चा एक सोच से पैदा हो ना कि संयोग से, ये आपको कहाँ तक सही लगता है? और अगर आपको ये विचार सही लगता है तो क्यों लगता है?
13: देखिए, जब जिंदगी में हम कोई भी काम करते हैं तो अगर सोच के साथ करते हैं, मैनेजमेंट के साथ करते हैं, तो हमने देखा है कि उसकी सफलता हमें ज़्यादा मिलती है और वो ज़्यादा सटीक होता है। उसी तरह से हम परिवार नियोजन के इस मुद्दे को भी देखें। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ परिवार को आप सीमित कर लें। परिवार
12: नियोजन बहुत मुद्दे की बात आपने कही है, क्योंकि लोग अक्सर परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग से यही समझते हैं कि बस हमें परिवार को सीमित करना है। तो बहुत अच्छी बात आपने उठाई, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। हाँ,
13: तो परिवार का ये मतलब, परिवार नियोजन का मतलब ये कदापि नहीं है कि हम परिवार को सीमित कर लें, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करके अपना काम खत्म कर लें, ऐसा नहीं है। परिवार में हम जब चाहें तब बच्चा हो, उसकी एक सही उम्र होनी चाहिए, दो बच्चों के बीच एक अंतराल होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने सोचा है कि 3 साल का अंतराल जो होता है वो अच्छा अंतराल होता है। तो इसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, इससे हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे के साथ माँ का भावनात्मक संबंध जुड़ पाएगा, और ये सारी खूबियाँ इसमें होंगी। लेकिन अगर महज संजोग से बच्चा पैदा होगा, मान लीजिए कोई मदर है, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और उसी बीच में वो कंसीव कर जाती है, तो ये उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, इससे उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तो

0: कल्पना करते हैं, उसमें माँ बाप भाई बहन स्त्री पुरुष मिलकर परिवार बनाते हैं। अभी एकल परिवार चल रहा है, मतलब कि पति और पत्नी ही मेन मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम जिस परिवेश की बात कर रहे हैं वहाँ सास ससुर भाई बहन स्त्री और पुरुष को लेकर परिवार बनने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमारे हिसाब से परिवार का अगर मतलब परिवार अगर मिलकर डिसाइड करेगा कि पति पत्नी को कब बच्चा होना चाहिए, दोनों पति पत्नी की सहमति से होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें भावनात्मक संबंध भी जुड़ेंगे और जो मैंने कहा कि संजोग की बात नहीं होगी, वो मैनेजमेंट के थ्रू होगा और सोच की बात होगी।
1: बिल्कुल, हम अक्सर ये देखते हैं कि शादी हुई नहीं कि जो घर की बहू होती है उस पर सास ससुर या सगे संबंधी वो प्रेशर डालना शुरू करते हैं कि हमें भाई खुशखबरी कब सुनाइएगा। तो ऐसे में जो एक महिला होती है वो बिल्कुल पिस सी जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसे कुछ करने की जीवन में मंशा होती है, पर वो कई बार वो परिवार के दबाव में आकर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इन चीजों से का सामना कैसे करना चाहिए?
0: देखिए, अभी जो हम देखते हैं, अगर किसी नव दंपति की शादी होती है और एक साल तक बहू को बच्चा नहीं होता है तो परिवार क्या अगल बगल में भी लोग बोलने लगते हैं कहीं इसकी बहू भांज तो नहीं है, एक साल हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो इन सारी चीजों को सुन के किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, खासकर जो नव दंपति जो बहू नए नए इस घर में आई है। इसके लिए हमारी सरकार ने भी एक योजना शुरू की है और वो नव दंपतियों को किट्स दे रही हैं, जिससे कि मतलब कंट्रासेप्शन किट्स दे रही हैं, घर घर जाकर आशा बहनें बांटती हैं कि कम से कम एक साल तक, शादी के एक साल तक आप गर्भवती ना हो। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक तो उनकी प्रॉपर उम्र हो जाएगी, हमारे यहाँ शादी की उम्र भी थोड़ी कम होती है, तो एक तो उनकी प्रॉपर उम्र हो जाएगी, दूसरा उसका भावनात्मक संबंध अपने पति के साथ साथ अपने परिवार से भी होगा और तब जो वो बच्चा आएगा उस घर में वो ज्यादा खुशियों का टोकरा लेकर आएगा।
1: जी अच्छा, ये बताइए कि जब किसी भी परिवार में एक महिला को अपने प्रजनन स्वास्थ्य या प्रजनन से संबंधित बातों को लेकर आजादी मिल जाती है तो उसका समाज और उस परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: आपका माधुरी जी, आपका ये जो सवाल है ये मतलब पूरे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा है बहुत सारी महिलाओं की शादी होती है जिस समय वो पढ़ ही रही होती हैं या उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा नहीं की है। अगर वो अंडर ग्रेजुएट कर चुकी हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने नहीं किया है, अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो पीएचडी करने की उनकी इच्छा है। तो इस तरह से अगर उनके ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो अपना एम्बिशन कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि घर परिवार सबों को साथ लेकर ऊंची पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के हेल्प की आवश्यकता होती है जो कभी कभी नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम अपना प्रजनन स्वास्थ्य खुद डिसाइड करें, खुद सोचें कि हमको हमारी प्रॉपर उम्र क्या है, हमको बच्चा किस उम्र तक पैदा कर लेना चाहिए, इस बीच में मुझे अपने एम्बिशंस को पूरा करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम एक नए समाज की परिकल्पना कर पाएंगे जिसमें महिला सशक्तिकरण होगा और महिला सशक्त होगी।
1: बिल्कुल, दैट इज ये जो है ये प्रजनन स्वास्थ्य चुनने की जो आजादी महिला को मिलेगी तो ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि लोग ये जानते हैं कि परिवार नियोजन कितनी बड़ी चीज है, कितने फायदेमंद है हमारे समाज हमारे देश के कल्याण के लिए, फिर भी आज भी ग्रामीण इलाकों में खासकर देखा जाता है कि लोग परिवार नियोजन का विरोध करते हैं, उसके साधनों के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, ऐसा क्यों?
0: देखिए, ये तो परिवार नियोजन का विरोध बहुत जगह पर होता है, ये बहुत सारे बैरियर्स हैं इसके, जैसे जो कल्चरल बैरियर है या फिर अभाव है इन चीज़ों का, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इन सारे मुद्दों को लेके चलना होगा। अगर इन सारे बैरियर्स को हम क्रॉस कर सकते हैं तो हम इस पर विजय पा सकते हैं

0: और फिर हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि कोई इसका विरोध करता है, क्योंकि किसी अच्छी चीज का विरोध हो ही नहीं सकता है। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि बैरियर्स को हम लोगों को क्रॉस करना है, बैरियर्स को तोड़ना है, तो इसके लिए सरकार तो बहुत सारा काम कर ही रही है। लेकिन मैं कहूंगी कि जो रेडियो रेडियोज हमारा है,
1: यानी
0: उस
1: खासकर आप सामुदायिक रेडियो की बात
0: सामुदायिक
1: कर रही
0: रेडियो
1: हैं।
0: है जिससे गांव-गांव में ये खबर जाती है,
1: बिल्कुल
0: सामुदायिक रेडियो के द्वारा लोगों को जानकारी दी जाए, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, ऐसे सरकार कर रही है। सास बहू सम्मेलन कर रही है और महीने में एक बार मेला लगा रही है जिसमें कि काउंसलिंग भी होता है, आपस में बातचीत भी होती है। तो इन सभी प्रचार प्रसार और साथ हमारे बालक बालिकाओं का जो एजुकेशन है, उनका बेसिक एजुकेशन का लेवल भी बढ़ाया जाए, तो इससे हम
1: मतलब
0: बैरियर को
1: उनको स्कूल लेवल से ही ये शिक्षा कहीं ना कहीं दी जानी चाहिए कि परिवार नियोजन या परिवार को सीमित रखना एक उनकी जिम्मेदारी है, समाज और देश दोनों के प्रति, परिवार
0: एकदम
1: के साथ साथ।
0: एकदम
1: डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी। मैंने आपके परिचय में लोगों को बताया, हमारे श्रोताओं को बताया कि आप भारत सरकार की जो पायलट प्रोजेक्ट है इम्प्लिनॉल, उसकी बिहार में मास्टर ट्रेनर है। तो क्या आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं कि ये इम्प्लिनॉल पायलट प्रोजेक्ट क्या है?
0: मैं इसकी नेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ बिहार सरकार की, और मैंने इसके तहत बहुत सारा काम भी किया है। अभी
1: जी
0: तक मैंने 3,000 केस में लगा चुकी हूँ, और बहुत सारे लोगों को, मतलब डॉक्टरों को मैं ट्रेन भी कर चुकी हूँ इसमें। देखिए, इम्प्लेनॉन जो है ये एक तरह का कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये
1: जी
0: प्रोजेस्ट्रॉन है, लेकिन ये खाने की गोली नहीं है, या इसे
1: अच्छा
0: कहीं पर कुछ किया नहीं जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी हैंड मतलब कि जिस हाथ से हम कम काम करते हैं, समझ लीजिए जैसे मेरे केस में बायां हाथ है, तो
1: जी
0: बायां हाथ में एक माचिस की तीली के बराबर प्रोजेस्ट्रॉन को छोटे से शल्य विधि के दौरान बिना बेहोश किए हुए लोकल एनेस्थीसिया में लगाते हैं, जो कि 3 सालों तक प्रभावी होता है, और ये 99.9% इफेक्टिव है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसे किसी को भी दे सकते हैं, जो महिला को बच्चा नहीं हुआ है उसको भी लगा सकते हैं, जो तुरंत बच्चा पैदा की है उसको भी लगा सकती है, 2 बच्चों में अंतराल के लिए अगर कोई लगाना चाहती है तो उसको भी दे सकते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई असाध्य बीमारी है जिसमें हम बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्शन की विधियों को नहीं दे सकते हैं उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका दायरा बढ़ जाता है। कहाँ नहीं दे सकते हैं, बस एक ही जगह है जहां हम नहीं दे सकते हैं, वो ये है कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर एक्टिव स्टेज में है तो हम नहीं देंगे। इसको हम कैटेगरी 4 कहते हैं, और
1: जी
0: कुछ महिलाओं में जिसमें कि अगर लिवर की कोई विशेष बीमारी, बहुत एक्टिव बीमारी है, तो उसको भी नहीं देंगे, वो कैटेगरी 3 में आता है। इसको देने के बाद महिला 3 साल के लिए निश्चिंत हो जाती है कि उसको गर्भ नहीं ठहरेगा, और 3 साल के बाद उसको उसी विधि के द्वारा एक छोटी सी सुई लगाकर निकाल देते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा सिर्फ अभी PMCH और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में चल रहा है, और इसके अलावे भागलपुर मेडिकल कॉलेज और वहाँ के सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब बहुत जल्दी सरकार इसको बहुत ज़्यादा विस्तारित करने वाली है, और मैं समझती हूँ कि ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक अच्छा उपाय होगा, और हमारा बास्केट इससे सशक्त होगा, जो हमारी खुशियों की टोकरी है, बास्केट्स ऑफ कंट्रासेप्शन है, वो इससे लाभान्वित होगा।
1: तो सुना ना आपने कितना इफेक्टिव वे ऑफ फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन का ये सस्ता सुलभ तरीका है। अब मैंने सस्ती सस्ता है ये तो अपनी ओर से कहा, पर मैं डॉक्टर साहिबा से जानना चाहूंगी कि इस एम्प्लिनॉल को लगाने में कितना खर्च आता है लगभग?
0: देखिए माधुरी जी, ऐसा है कि ये अभी सरकार का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है,
1: जी
0: अभी मतलब जो लगाने वाली लाभार्थी हैं उनको कुछ भी देना नहीं पड़ता है, सरकार हमें सप्लाई करती है, लेकिन बाद में जब मार्केट में आएगा तो मैं समझती हूँ कि 2,000 से 2,500 रुपये इसकी कीमत
1: कीमत होगी,
0: होगी, लेकिन अभी उनके लिए बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल ही मुफ्त है और हम लगाने वाले भी उनके लिए मुफ्त हैं, हम लोग तैयार बैठे हैं उनको सेवा देने के लिए।
1: तो सुना ना, ये बिल्कुल मुफ्त है और जिसे भी इसकी जरूरत है आप जरूर जाए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में, ये चीजें उपलब्ध है और आप इसका पूरी तरह से लाभ इस शहर में यानी पटना शहर में उठा सकते हैं, साथ ही साथ भागलपुर में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो मैम आपका धन्यवाद इतने अच्छी तरह से सभी सवालों का जवाब देने के लिए, आगे और भी प्रश्न आएंगे।
2: अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला सवाल करूंगा और अगला सवाल हमारा ये है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को किशोरों और अविवाहित युवकों की विशिष्ट जरूरतों के प्रति अधिक समावेशी और मतलब उनको इंक्लूसिव कैसे कर सकते हैं और वो कैसे उसके लिए उत्तरदायी होंगे।
0: देखिए ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं समझती हूँ कि जरूरत है हमारे समाज को इसकी बहुत, क्योंकि हमारे जो युवा हैं या एडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इससे ही जानकारियाँ हासिल करते हैं, कभी कभी ये जानकारी सही नहीं भी होती है, जब ये सही नहीं होती है तो उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हो जाती हैं, तो इनको हम बैरियर वाइज समझते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एडोलेसेंस में जब वो आ जाता है तो उसी समय से उनका प्रजनन स्वास्थ्य का एक क्लास होना चाहिए, सप्ताह में कम से कम एक दिन का प्रजनन स्वास्थ्य शुरू करेंगे हम ईपीएच की पढ़ाई के जैसा, लेकिन उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहेंगे। स्कूल लेवल पर जब ये जानकारी होगी तो वो इधर उधर से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, जानकारी हाँ आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जानकारी सही है या हमने जो इंटरनेट से प्राप्त किया वो जानकारी सही है। इसी तरह से कॉलेज में भी ये पढ़ाई होनी चाहिए, तब तक तो टीन और भी आगे आ जाता है तो वहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जो हमारा कम्युनिटी है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम्युनिटी सेंटर में इस तरह के लोग हों जो कम से कम सप्ताह में एक दिन जाके संगोष्ठी करके उनको ये बातें विस्तार में बता सके। मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार इसके लिए सजग है और वो पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक युवा क्लिनिक रखी हुई है। पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो सप्ताह में दो दिन ही ये खुलता है, लेकिन हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर प्रतिदिन युवा क्लिनिक चलता है जिसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं, जानकारी भी देते हैं, और युवा अगर अपने पथ से थोड़ा भटक भी गए हैं और उसके चलते उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, और इस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया उस हिसाब से करने से इसके सफल होने की संभावना ज्यादा है।
2: तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि युवा क्लिनिक चल रहा है, तो हमारे रेडियो से ये जानकारी देना चाहेंगे कि युवा जो है वो युवा क्लिनिक जाएं, सप्ताह में दो दिन आपने कहा,
0: नहीं मेडिकल कॉलेज में रोज है।
2: अच्छा,
0: लेकिन पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम दो दिन तो खुलता ही खुलता है।
2: जी, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और अगला सवाल हमारा ये है कि आधुनिक गर्भ निरोधक विधियां जो होती हैं जितनी भी हैं को अपनाने में वंचित समुदायों जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी हैं उनको किन किन प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक और प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
0: अब थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि ये मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स है क्या। कंट्रासेप्टिव्स दो तरह के होते हैं, एक जो हम परमानेंट जिसको कहते हैं और एक टेम्पररी। तो परमानेंट का तो आप लोग सभी जानते हैं, हमारे यहाँ महिला वंध्याकरण करके लोग निश्चिंत हो जाते हैं, अभी हम लोग नॉन स्काल्पेल वैसेक्टमी पर भी बात करेंगे
2: जी, जी।
0: वो बहुत कम हो रहा है हमारे यहाँ। तो परमानेंट में तो हो गया पुरुषों के लिए नसबंदी और महिला के लिए वैसेक्टमी और महिला के लिए महिला वंध्याकरण। लेकिन अगर टेम्पररी की बात की जाए तो सरकार का जो बास्केट है वो बहुत सशक्त हो गया है। हमारे बास्केट्स में ढेर सारी चीजें आ गई हैं, हमारे बास्केट में निरोध है, हमारे बास्केट में अंतरा है जो एक इंजेक्शन है हर तीन महीने में लिया जाता है, हमारे बास्केट में अभी मैंने जो बताया इम्प्लानॉन आया नहीं है, आने वाला है, और इसके अलावा खाने की गोलियां हैं जिसको ओरल पिल्स कहते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, इसके अलावा IUCD है, और इसके अलावे भी सेंट क्रोमेन नाम की एक गोली है जो छाया के नाम से सरकार लाई है, और सब कुछ लेते हुए कि इसी पिल्स भी है कि अगर खुदा न खास्ते किसी का किसी दंपति का ऐसा हो गया कि कोई कंट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहे हैं और वो साथ में रह गए हैं तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर खाने वाली एक ईजी पिल्स भी होती है। ये सारे हमारे टेम्पररी बास्केट्स में हैं। अब है कि इतना सारा सब कुछ होते हुए भी ये समाज वंचित क्यों है
2: जी?
0: तो सबसे पहले तो मैंने कहा एजुकेशनल लेवल, एजुकेशन इनके पास नहीं है तो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये इनके लिए कितना अच्छा है। माँ के स्वास्थ्य को अच्छा करने में इनकी भूमिका है, बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा करने में इनकी भूमिका है, और तो और पूरे परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, परिवार के रिसोर्सेस को बढ़ाने में इनकी भूमिका है। तो फिर से वही अवेयरनेस प्रोग्राम हम करें, मेला लगाएं, जगह जगह काउंसलिंग की व्यवस्था करें, रेडियो जो हमारा गांव-गांव जाता है उसमें हम इसको करें, और जो हमारा प्रसार भारती है वो भी इसके लिए काम कर रहा है, वो भी तरह तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएं, तो इसमें फर्क पड़ेगा
2: जी। धन्यवाद। और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि गर्भ निरोधक जो निर्णय होते हैं वो पुरुष का जो साझेदारी होता है उसमें उसका कितना प्रभाव रहता है? पुरुष की साझेदारी कम है, ज्यादातर महिलाएं ही इस प्रोग्राम में भाग लेती हैं और वो ही मैनेज करती हैं ये सारी चीजें। तो अगर परिवार नियोजन की पहल में उनकी भागीदारी पुरुषों की बढ़ानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, आपने एकदम सही कहा, पुरुष की भागीदारी बहुत कम है। मैं बार बार कह रही हूँ कि दो बच्चों के बाद तुरंत वंध्याकरण कराना ही महिलाएं चाहती हैं और ये इसी को समझती हैं कि ये परिवार नियोजन है, लेकिन जब मैं बता चुकी हूँ कि ऐसा है नहीं। पुरुष की भागीदारी बहुत जरूरी है। जो समाज हमारा है जिसकी धुरी स्त्री और पुरुष दोनों है, अगर एक चक्का कितना भी सशक्त रहे और दूसरा नहीं है तो गाड़ी का आगे चलना संभव नहीं होता है। उसी तरह से अगर महिलाएं जब भी, जैसे हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व चलता है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके बनाया हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने एक विंग रखा है कंट्रासेप्शन विंग, कि अगर आपका बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या ऐसा करेंगे कि आपको 3 साल तक बच्चा ना हो। तो उस स्थिति में महिलाओं को तो हम लोग ये सारी जानकारी देते हैं, लेकिन अगर वो अपने पतियों के साथ, अपने मदर इन लॉ के साथ, अपने और मेल मेंबर के साथ आते हैं तो पुरुष भागीदारी के बढ़ने से जो आइडियल मैंने कहा कि जिस तरह से परिवार नियोजन होना चाहिए वो जरूर बढ़ेगा, और पुरुषों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए जहाँ कभी उनको मौका मिले इस तरह का, ये तो वो भागीदारी दें और वो ये समझें कि ये उनकी बराबर की जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ महिला की जिम्मेदारी।
2: जी धन्यवाद मैम, इतने अच्छे तरीके से आपने ये समझाया।
3: जी आपको नमस्कार है, प्रणाम है। आप हमें यह बताइए परिवार नियोजन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, कौन सी विधि है जिसे पढ़े लिखे और अनपढ़, साक्षर या निरक्षर, दोनों तरह के लोग जो है अपना सकते हैं। और एक भ्रांति है लोगों में कि यदि हम परिवार नियोजन कराएंगे, नसबंदी कराएंगे तो हमारा मर्दानगी, पुरुषार्थ जो है कम हो जाएगा, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: आपके कहने का मतलब है कि पुरुष नसबंदी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, मेनली नो स्काल्पल वैसेक्टमी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि पुरुषों के लिए नसबंदी है जिसमें कि नो स्काल्पल वैसेक्टमी जो है एक बहुत छोटा सा चीरा लगा के, नहीं के बराबर चीरा लगा के हम वास डिफरेंस को अलग करते हैं, जिससे कि पुरुष के शुक्राणु महिला के ओवम से नहीं मिल पाता है और निषेचन नहीं हो पाता है। यह इतना छोटा प्रोसीजर है, इसमें सरकार ने 3,000 की राशि भी दे रखी है लाभार्थी को, लेकिन मुझे बहुत खेद है कहने में कि बहुत कम पुरुष इसको अपनाते हैं। जितना अपनाना चाहिए हमारे हिसाब से 50% तो भागीदारी जरूर होना चाहिए था पुरुषों की, और खास करके नॉन स्काल्पल वैसेक्टमी आ जाने के बाद, लेकिन ये करीब करीब नगण्य है।
2: तो
0: आप ये समझिए कि मेन इसमें भ्रांति ही है। पुरुषों का सोचना है कि मेरे सहवास की इच्छा में कमी आ जाएगी। दूसरा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, तीसरा मैं नपुंसक हो जाऊंगा। यहाँ तक कि महिलाएं भी सोचती हैं कि उनके परिवार का जो ब्रेड अर्नर है, जो पैसा कमा के लाने वाला है, अगर वही कमजोर हो जाएगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो वो भी नहीं चाहती कि उनके पुरुषों का नसबंदी इस विशेष तरीके से भी हो। तो सबसे पहले आप इस भ्रांति को दूर करेंगे, और इस भ्रांति को दूर करने में सबों को मिलकर कार्य करना होगा, तभी हम इसको बढ़ा पाएंगे।
3: जी, आपका उत्तर बड़ा ही संतोषजनक है। आप चूंकि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं, तो यदि कोई नया तरकीब हो तो बताया जाए। रेडियो के माध्यम से हम लोग जागरूकता करते ही हैं, लेकिन लोगों के दिमाग को, माइंडसेट को कैसे बदला जाए?
0: तो इसमें देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार तो बहुत सारा चीज कर रही है। जैसे कि एक तो सरकार पखवाड़ा चलाती है, परिवार नियोजन पखवाड़ा, जो कि हर 4 महीने पे होता है। उसमें इन सभी चीजों की जानकारी दी जाती है और ये बहुत विस्तृत रूप से हर जिले में चलता है। दूसरा, अभी जीविका के साथ मिलकर राज्य स्वास्थ्य समिति एक अभियान चला रही है 2022 से ही, जो कि करीब करीब 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और ये भी काफी अच्छा काम कर रही है। तीसरा, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व है, जिसमें मैं बार बार कह रही हूँ कि एक कंट्रासेप्शन विंग है, जिसके द्वारा भी हम लोग इसकी जानकारी और इसकी जितनी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा, परिवार विकास मिशन एक सरकार की योजना है, जिसके तहत इस बैरियर को दूर करने का उपाय किया जा रहा है। ये सब मिलकर अगर काम करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में इस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।
3: कि हमारा देश जो है बहुराष्ट्रीय बहुधर्मी देश है, हर बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब लोग रहते हैं। कहीं कहीं यह देखा जाता है लोग जो है धर्म का बैरियर लगा देते हैं कि हमारे धर्म में इस तरह के योजना को नहीं हम लागू कर सकते हैं। उसके लिए आपकी क्या नीति है?
0: देखिए, ये तो है ही, बहुत सारे नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें कि परिवार नियोजन को वर्जित किया गया है, उसको सही नहीं माना गया है। ये उनके धर्म गुरुओं का कहना होगा, तो जिसके चलते हमारा परिवार नियोजन प्रभावित होता है। लेकिन सबों का एक ही काट है, अगर हमारी शिक्षा उत्तम होगी, जिस दिन हम ये जज करने लगेंगे कि हमारे धर्म गुरुओं ने ये उस समय कहा था जबकि कितना हमारा पॉपुलेशन कम था, और आज हमारे पॉपुलेशन का क्या हाल है वो हम लोग देख ही रहे हैं। ट्रेन में जाइए तो ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं, प्लेन में जाइए तो प्लेन में रिजर्वेशन नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें उन सभी बिंदुओं को लेते हुए और ऑब्स्टिकल्स को, जितने बैरियर हैं, उसको तोड़ना होगा और परिवार नियोजन की भ्रांति दूर करनी होगी और हम इस पर विजय पा सकेंगे।
3: सरकार द्वारा परिवार नियोजन योजना को सफल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर विशेष करके या शहरी स्तर पर कौन कौन सी आकांक्षी योजना चला रही है, और इस योजना के सफलता में कहीं संदेह तो नहीं है?
0: देखिए, योजनाएं तो चलती ही रहती हैं, योजनाएं सरकार चलाती हैं, लेकिन उसको मानने वाले कौन है? हम लोग हैं। हम जब तक रिसेप्टिव नहीं होंगे तब तक कोई भी योजना लाभान्वित नहीं हो सकती है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है उसको पहले मतलब कि सेंसिटिव होना होगा कि सरकार अगर चला रही है तो हमारे भले के लिए चला रही है। सरकार का अपना क्या भला है इसमें? हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा, तो तब सरकार को फायदा है। इसलिए उसी हिसाब से हमको सोचना चाहिए। और जो योजनाएं मैंने अभी बताया, 4-5 योजनाएं बहुत धड़ल्ले से चल रही हैं, उसको अमल करके हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
3: जो लड़के विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो कामगार हैं, चलते चलते उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: लड़कों के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने टीन से ही, जैसा मैंने बताया, अपने टीन एज में सबसे ज्यादा जो बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है वो टीन्स में होती है प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति, तो उसको सही जगह से जानकारी लें, सही जानकारी लें, और अगर उसमें कुछ संशय लगता है तो ऐसी जगहों पर जाके अपनी भ्रांति दूर करें जहां उनको सही सुझाव मिलेगा, और इस तरह से वो अपने देश की भी मदद कर सकते हैं और अपने प्रजनन स्वास्थ्य को भी अच्छा करते हैं।
3: डॉक्टर रानू सिंह जी अपने विचारों को बड़े ही बेधड़क तरीके से रखा।
4: तो दोस्तों ये था हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, मिलते हैं अगले एपिसोड में, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
10: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
11: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अब समय हो गया है समाचार प्रभात का, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हम सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
8: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
7: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
9: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
7: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉकड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
5: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
14: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
13: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
14: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
13: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
14: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
13: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
14: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
13: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
14: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
15: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए

0: सेंट हावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रेमजम, सुनो दिल से।

0: जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: मैंने

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87894 18744।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604-348-652 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: में 90.4 FM रेडियो रिमझिम पर सुन रहे हैं और अब समय हो गया है आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का। हम आपको सीधा जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
13: कार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्ति की तिथि से अगले 5 साल तक दोनों खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ का पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ का स्वाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया स्लोवाकिया दौरे के दौरान वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड राशी को उपहार स्वरूप ठेकुआ प्रदान किया। प्रधानमंत्री के इस कदम को बिहार और पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इंडियन गैस एजेंसी के ठेकुआ उपहार स्वरूप दिए जाने से राज्य के पारंपरिक खान पान को नई वैश्विक पहचान मिली है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, साथ ही राज्य के दक्षिणी भाग में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में 3, शेखपुरा में 2 तथा नवादा और जमुई में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने सबौर हर्षित नामक धान की उन्नत किस्म विकसित की है, जो कम बारिश और सीमित सिंचाई की परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सबौर हर्षित धान की फसल लगभग 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में इससे 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह किस्म सूखा सहनशील होने के साथ साथ कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता वाली मानी जाती है। प्रदेश में पिछले 7 महीनों में रोजगार के 63,115 नए अवसरों का सृजन किया गया। वहीं बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 68,822 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में 7-3 की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1,799 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 10,759 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए अब शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए नोडल संस्थान भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से जारी परिणाम के अनुसार वैशाली के हिमांशु अजनबी और कटिहार के रवि कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। दोनों ने 120 में 117 अंक प्राप्त किए हैं। छात्राओं में सीतामढ़ी की अंजना और बेगूसराय की प्रियंका पासवान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 12 जुलाई को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र 22 जून से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस पदाधिकारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। इधर बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से अब तक कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन मांगा है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 30 लाख रुपए मूल्य की 304 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद की है। छापेमारी के दौरान 2,02,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 54,84,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल पकैया नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। गया जिले के नक्सल प्रभावित लटुआ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रेल मंत्री और सीएम ने छपरा से आनंद विहार नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, 5 वर्षों में बिहार को मिलेंगी 200 नई ट्रेन। प्रभात खबर नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, एनटीए का परामर्श, डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड, बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दारोगा भर्ती, अब 1 पद के लिए 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना शहर से बाहर होंगे सारे कोचिंग सेंटर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत, वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
11: Now pick your phone up.
12: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
13: हेलो
14: हेलो,
13: स्वागत है आपका रेडियो रमजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: नमस्ते मैम।
13: नमस्ते।
14: हेलो,
13: हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका?
14: चालू कुमारी।
13: और कहाँ से हैं आप? ओके, क्या हाल है आपका?
14: ठीक है, बताइए।
13: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा है आजकल?
14: पढ़ाई क्या होगा?
13: चलिए बढ़िया है, पढ़ाई चल रही है कि अभी छुट्टी है?
14: हाँ अभी छुट्टी है।
13: ओके, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: भाई तू मेरी जान है।
13: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
14: मेरी सिस्टर को और और सभी श्रोताओं को और आपको।
13: ओके तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
1: नमस्ते मैम, आपको गाना सुनना है?
0: जी गाना सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
1: सुना देखिए
0: क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, आपको बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: पूरी गाना आज नहीं बजता
0: जी, भोजपुरी गाना सुनता है, बताइए।
1: श्रीलाल का गाना कोई भी सुना दीजिए।
0: खेसारी लाल का गाना आप ही बता दीजिए, आपको कौन सा उनका गाना अच्छा लगता है?
1: भक्ति में कोई भी सुना दीजिए, भक्ति वाला।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ सुनाना है।
0: बता दीजिए किसे?
1: बेटी है उनको।
0: तो गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: रेडियो रमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से

0: से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: कैसे हैं?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। क्या हो रहा है? और सुबह मौसम गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बहुत काफी गर्मी।
2: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
1: डेली टेम्परेचर इतना हाई हो रहे हैं कि बाप रे बाप, घर में से निकला हुआ मुश्किल हो जाता है। और सब बताइए, सब अच्छे है ना?
2: जी और सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं?
1: सब अच्छे हैं जी, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से सब अच्छा है। बढ़िया है। गाना सुनना है, दिल ने तुझे याद किया, यही सुनना है।
2: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जितना सुनने वाले हैं उन सभी को भी है। और आगे
2: जी जी, एक बार अपना नाम बताते
1: हैं। जी विकास।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं
1: जी,
2: सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो, स्वागत है आपका रिवेन्यू 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: रितेश कुमार, अम्मा मॉडल।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: अम्मा मॉडल।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, आप बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या है आप?
0: पढ़ाई कर रही हूँ।
1: कौन सी क्लास में है?
0: जी तारीख। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
1: अच्छी
0: चल रही है, बढ़िया है, मन लगा के पढ़िए। तो बता दीजिए अभी कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मूवी वाला गाना चल सकता है?
0: जी, सारा मूवी का गाना चल सकता है। बताइए कौन सा मूवी का आपको सुनना है?
1: स्त्री मूवी का आज क्या चला।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड हुई है?
1: सबसे पहले आपको और मेहमान को और मम्मी को।
0: जी जी,
1: पूरी रेडियो रंजन।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
14: Jab phone ding ding bajte hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
16: नमस्ते मैडम जी।
17: नमस्ते, क्या हो रहा है?
18: कुछ नहीं आप... बस और आपसे बात।
17: भारती जी बोल रही ना आप?
18: हाँ।
17: आपका नियमित सोता हूँ मैं तो रूम जिम के कार्यक्रम सुनते हैं हम तो रोज 5 बजे से 7 बजे तक।
18: जी
17: और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कैसी हो?
18: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
17: हम तो बढ़िया है मैडम जी। अभी तो क्या है बारिश हो रहा है तो उधर
18: बारिश हो रहा है।
17: हाँ बारिश हो रहा था श्यामगढ़ स्थल।
18: अच्छा जी, तो थोड़ा इधर भी भेजा कीजिए, इधर तो बहुत गर्म।
17: आप तो उधर भेजेंगे ना, बारिश आएगी आपके उधर भी आएगी बिहार में भी बारिश।
18: देखिए अब इंतजार तो कर ही रहे लोग गर्मी, लेकिन इतना ज्यादा है कि क्या ही बताए आपको।
17: हाँ सही बोल रही आप मैडम जी, भेजेंगे आपके उधर भी भेजेंगे।
18: जी बिल्कुल भेजिए।
17: गाना सुनना है?
18: बता दीजिए कौन सा गाना।
17: गाना सुनना है मुझे दिल का क्या कसूर।
18: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
17: डेडिकेट है ना ये वाला सॉन्ग।
18: बता दीजिए किसकी किसको।
17: जयरे की गोमान सिंह धाकड़ है, चरण सिंह धाकड़ जी है, सुनील साहू जी है मकसूद अंगल से, इनके लिए और आपके लिए डेडिकेट गाना ये वाला है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी नहीं करना, वादा तो टूट जाता। कुमार सानू और आशा भोसले जी का आवाज में ये वाला गाना।
18: जी जी
17: और क्या, यही वाला सुनना है।
18: ओके तो गाना प्ले करें।
17: प्ले कर दीजिए।
18: सुनते रहें रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या हो रहा है? मैं
1: कुछ नहीं, बस बात हो रहा है आपसे।
0: खाना हो गया है?
1: खाना हो गया। आपका हो गया?
0: अभी खा लिए।
1: सब तो बढ़िया है। और बताइए, और सब कैसा है? सब कोई कैसे है घर में?
0: सब ठीक है घर में।
1: तो बताइए, कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: गाना नहीं है तो अर्थी में कि चार्जर को ही लगा ले लूं।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: हाँ, आपको और
1: ओके। तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
11: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
10: कैसी हैं मैम?
11: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
10: बिल्कुल ठीक हूँ। गोपालगंज का मौसम का क्या मिजाज है?
11: गोपालगंज का मौसम तो बहुत ही गर्मी पड़ रहा है यहाँ
10: जी। इधर भी हमारे झारखंड में भी देवघर जिला में बहुत गर्मी है मैम, तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर तापमान है।
11: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, आप देखिए क्या होता है, बारिश कब होता है।
10: हाँ, कल लगी जैसे बारिश होगी, लेकिन यहाँ हम लोग के तक नहीं पहुँची।
11: मौसम तो बना रहा है कभी कभी बारिश के जैसा, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बताइए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है?
10: मैम जानी दुश्मन फिल्म का गाना सुना दीजिए, पुराने जानी दुश्मन जो शत्रुघ्न सिन्हा का है।
11: कौन सा सॉन्ग?
10: गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने जो गाया है। गीत के बोल बता रहा हूँ मैम, गीत के बोल है सुन भय साधो बोल भय माधो।
11: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
10: जी, सबसे पहले मैम आपको मैं सुनूंगा, रेडियो रिमी के जितने लिसनर हैं सब तक कोई सुनेंगे, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं विष्णु प्रसाद यादव हैं, कृष्ण कोल हैं, मदन कोल हैं, राजकुमारी हैं, जुगल कोल हैं, मिली कोल हैं, वो डेडिकेट करना चाहता हूँ।
11: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमी में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: हमको तो पसंद होंगे बस धरती।
1: अच्छा, हाँ जी, ठीक। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, आप बताइए।
1: हम भी ठीक हैं। क्या हो रहा है अभी?
2: अभी बैठे हैं, बहुत ज्यादा धूप है।
1: धूप तो बहुत ही तेज है आज, तो गर्मी और ज्यादा लग रहा है।
2: बहुत ज्यादा, वही घर में काम लगा हुआ है तो सोच रहे थे कुछ करे, तब तक इतना गर्मी है कि बैठे खाना बैठ के।
1: बताइए आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आज गाना सुनना है नीलकमल सिंह का सैड सॉन्ग। कोई भी
1: नीलकमल जी का कोई भी सैड सॉन्ग?
2: कोई भी सैड सॉन्ग हो।
1: आप बताइएगा की आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है।
2: काजल राघवानी अपने जो डांस किया है ना, वो वाला।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: डेडिकेट तो अपना ये लीजिए ना, मेरे सामने जी से बात। बोले। हाँ, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है, अपना सुनाइए।
1: ठीक है,
2: गाना हो गया
1: जी? हाँ, मेरा हो गया, आपका हो गया?
2: चलिए ठीक है, संजय।
1: ठीक है, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनकर सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, इतने देर बाद आप मिली हैं। ये रेडियो बहुत मुश्किल हो गया है रंजन।
15: क्यों?
16: इसलिए मुश्किल हो गया है कि बहुत देर से लगाना पड़ता है।
15: अच्छा।
16: बहुत महंगा हो गया है रेडियो रिंग जी।
15: जी कॉल तो आ ही रहे हैं।
16: हाँ कॉल तो आ ही रहा है।
15: कैसे हैं आप?
16: हाँ जी बहुत मैं अच्छा हूँ और शुक्रिया है कि आपसे मिल गई, नहीं तो अब छोड़ देने वाला था मैं।
15: अच्छा कि हमने कॉल उठा लिया आपका।
16: उठा लिया नहीं तो बस एक ही मतलब शुक्रवार को करते हैं।
15: अच्छा जी। और सब बढ़िया है?
16: और यहाँ की गर्मी बहुत पड़ रहा है।
15: जी गर्मी तो बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है।
16: गोपालगंज में पानी नहीं है, हालत खराब हो गया, रात को भी नींद नहीं आता है।
15: जी
16: तो अभी इसी नींद के हालत में जो है गाना कैसे छोड़ दिया जाए सुनना?
15: जी गाना से थोड़ा राहत मिलता है।
16: हाँ गाना से राहत मिलता है कि रेडियो लेकर बैठो और सुनते रहो, पसीना निकालते रहो।
15: गर्मी है तो क्या कीजिएगा।
16: अरे बाबा इतना गर्मी कभी नहीं पड़ा था हमको लगता है यही। बहुत प्यार मैडम वो गाना सुनना है,
15: बता दीजिए।
16: दम है तो मुझको थाम ले ऐसा कोई कविता कृष्ण मूर्ति का गाया हुआ था कि उसका दम है तो आना मुझको थाम ले। ऐसा ही है वो तो भी कहीं मैं सुन रहा था तो सोचा कि आज ये भी फरमाइश करूंगा गाना।
15: ओके
16: और सब सुनाइए कैसा है आपका भी?
15: और सब बढ़िया है तो गाना प्ले करते हैं।
16: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: अच्छा है।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी फोन लगा रहे आपके पास।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है राम तेरी गंगा मैली।
0: और गाना इसका कौन सा?
1: गाना सुनता है बस सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे सुन लिया।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
1: आपको? जितने रेडियो रेंज मार्जिन सब है, सब श्रोता दोस्त है सबके साथ।
0: ओके, तो गाना प्ले करें?
1: जी मैडम जी।
0: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
12: भरोसे वाले से लेंगे,
11: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
12: और कीमत भी।
11: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
17: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
20: नमस्ते मैडम जी।
19: नमस्ते।
20: कौन, भारती जी बोल रही है कि सोनी जी बोल रही है?
19: पहचानिए।
20: मेरे को तो भारती जैसी आवाज लग रही है।
19: हाँ जी
20: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
19: हाँ हाँ, कैसे हैं आप?
20: बढ़िया है बहन जी, शादी में आए, इंदौर आए, शादी है रिश्तेदारों में, तो इंदौर से कॉल हो रही है, आपसे इंदौर से बात हो रही है।
19: जी तो अभी क्या हो रहा है?
20: अभी कुछ नहीं दीदी, अभी तो खाना माना तैयारी चल रही, खाना खाएंगे।
19: जी जी,
20: आपने खा लिया क्या?
19: जी हमने खा लिया।
20: अच्छा, और दीदी आज मेरी फरमाइश आएगी,
19: बता दीजिए।

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: गाना सुनवा दीजिए।
1: जी गाना सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम संतोष महतो।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: बैकुंठपुर, डिगवा दिगौली, बैकुंठपुर से।
1: तो बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
0: गाना सुनवा दीजिए फूल और कांटे का।
1: गाने का नाम?
0: कौन सा सुनवा दीजिए?
1: कांटे का कोई भी सॉन्ग।
0: हाँ जी।
1: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ जी,
1: बता दीजिए।
0: सबसे पहले आपको पूरा जुड़ा जितना लोग है, अभी बच्चा, सब लोग को सुनवाना है।
1: ओके, तो कैसे हैं आप अब?
0: अभी तो हम लोग पंजाब में हैं।
1: ओके, तो हाल चाल बढ़िया है?
0: हाँ जी बढ़िया है।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते रहे रेडियो प्रेम जिम 90.4 FM।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड, चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
10: Now pick it up, now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: Jab phone kendi bajti hai to kehte hain hello.
13: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein.
13: Hello.
14: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी नमस्कार।
16: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी मास्टर बोल रहे हैं से।
16: जी जी,
15: बहुत बिजी रह रही है अभी, 12 बजे तक तो बहुत सब बताइए, क्या समाचार है?
16: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
15: अरे हम लोग का तो देख ही रहे, मशीन चल रहा है, आपका कार्यक्रम चल रहा है, 9 बजे चलता है दिन भर।
16: जी, तो मौसम कैसा है अभी?
15: अरे कहिए मत, इतना धूप है ना कि जल जाइएगा। उधर से पानी नहीं भेजिए, बल्कि आपके तरफ पानी ज्यादा पड़ता है, बरखा ज्यादा होता है उधर।
16: अभी तो हम लोग के यहाँ भी धूप हुआ है, देखिए कब बारिश होता है।
15: ना उधर बहुत बारिश होता है, हम लोग की तरफ भी, हम लोग इधर दक्षिण बिहार रोहतास जिला में है ना, हम लोग की तरफ कम होता है, उधर ज्यादा होता है,
16: बहुत गर्मी होता है। हम भी गए हुए उधर, बहुत गर्मी होता है।
15: तो गाना सुनवा दीजिएगा, वो सनम बेवफा मूवी का है।
16: कौन सा सॉन्ग?
15: बे इरादा नजर मिल गई तो, बे इरादा नजर मिल गई तो, हाय मुझे ये वाला है ना। वही वाला है। और सबसे पहले सुनवाएंगे आपको और हम लोग सुनेंगे रोशन टेलर में जो काम करते हैं हम लोग।
16: तो फिर गाना प्ले करते हैं रेडियो रंजन 90.4
15: जी। नमस्कार
16: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बिल्कुल मस्त हैं, बिंदास हैं।
0: जी, ऐसे ही होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है?
1: अभी तो हमारे घर देना होना मतलब हाँ, पंखा चल रहा है। लोग गर्मी की छुट्टी मिला है ना।
0: तो भोजन हो गया आपका?
1: जी भोजन हो गया, अब बनेगा खाना दोपहर का।
0: अच्छा जी, बता दीजिए।
1: मैम आपकी तरफ मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम तो बहुत गर्मी पड़ रहा है।
1: जी, इधर भी वो पता ना टेम्परेचर कितना यार, 40 डिग्री है कि कितना डिग्री है, बहुत गर्मी। सुबह और शाम बुझाई नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या
0: गर्मी
1: करें।
0: बढ़ गया है थोड़ा। बता
1: जी जी गर्मी बढ़ गया। तब गाना सुनना है,
0: दीजिए कौन सा सॉन्ग।
1: दारू का चमक आ गया ना हो, ये गाना वही सुना दीजिए। गाना सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं सभी लिसनर को।
0: ओके, तो गाना प्ले करें।
1: जी प्ले कर दीजिएगा।
0: तो फिर गाना प्ले करते हैं।
1: जी प्ले कर दीजिएगा।
0: जी, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
10: Hello, hello, hello.
11: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम। हेलो, मैं चोया। नमस्ते,
13: क्या हाल चाल है?
12: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
13: बस बढ़िया, आज बहुत ज्यादा गर्मी है।
12: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
13: विकास कुमार बोल रहा हूँ, चिंता।
12: और सब बताइए। गर्मी तो बहुत काफी है आज।
13: अभी थोड़ी देर पहले गोपालगंज हम गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी।
12: धूप भी वैसे ही निकला हुआ है।
13: एक हाथ में मेरी लेडी से बैठी हुई थी, वो पैसा निकालने के लिए गई था, तो बोले कि चलो जल्दी चलो, धूप पड़ रहा है बहुत ज्यादा।
12: चलिए ठीक है, धूप में घर में रहिए, धूप ज्यादा है।
13: और बताइए, खाना उना खा लिया मैडम?
12: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
13: 9 बजे हम लोग खा लेते हैं।
12: तब तो अच्छा है।
13: आज गाना सुनवाइएगा हमको, सॉन्ग सुनवाइएगा क्रांति फिल्म का।
12: कौन सा सॉन्ग?
13: तो क्रांति फिल्म का एक सॉन्ग नहीं है, झूठ बोले कौए काटे काली कौए से, ये वाली सुनवाइएगा, मस्त गाना है एकदम।
12: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
13: सबसे पहले आपको, जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सब, उसका ये गाना अपने लड़की के लिए, अपने भाई के लिए, बस एक मेरा दादाजी है।
12: तो फिर गाना प्ले करते हैं।
13: ठीक है,
12: सुनते रहे सबके साथ।
13: और सब बढ़िया है ना? वो
12: जी जी बिल्कुल, मेरा बढ़िया है।
13: चलिए, कल भारती जी का चल रहा था ना?
12: सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हाँ हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
0: जी मैं नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास शहर।
1: क्या हाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: गर्मी हो रहा है उधर?
1: जी जी गर्मी तो बहुत ही है।
0: तो आज विक्रमगंज में और कारागार में और ये रोशन टेलर धनाव के जो है ना एसाद मास्टर गाना सुनवाना चाहते हैं, सिर्फ तुम का। टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा। बहुत दिन के बाद आपके पास कॉल लगा, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कॉल लगेगा, कब लगेगा, कब तक बज जाएगा गाना?
1: गाना 2 दिन के बाद बजेगा आपका।
0: 2 दिन के बाद बजेगा? अच्छा ठीक है मैम,
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
10: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम।
12: सुनो दिल।

0: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99 393 65 9 23।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: उत्तर बिहार का गौरव,
10: सारण प्रमंडल की शान,
9: गोपालगंज की धड़कन
10: और अपने भाषा की पहचान,
9: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 62052 6112 पे।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक
1: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सलाम। और घड़ी की सुइया बता रही है कि समय हो चुका है आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, और अब वक्त है अपने पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो जहां आपकी आवाज़ आपकी पसंद और आपकी फरमाइशों को मिलता है खास सम्मान। और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी, और अगले 4 घंटे तक यानी दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक हम साथ बिताएंगे खुशनुमा गीतों दिलचस्प बातें और आपके पसंदीदा पेशकश के साथ। तो जुड़े रहिए 90.4 FM रेडियो रिमझिम के साथ, क्योंकि यहाँ हर धुन में अपनापन और हर पल में है मुस्कुराहट। तो चलिए मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। और शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहें जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527288291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 72776665 पे, लेकिन कॉल सिर्फ वही लोग करें जो व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं यूज करते हैं। और जो भी व्हाट्सएप और इंस्टा जो भी लिसनर हमारे यूज करते हैं वो लोग आप लोग कॉल नहीं करिए, और आप लोग व्हाट्सएप या फिर इंस्टा से जुड़िए। और चलिए बिना देरी किए आज की शो की आगाज करते हैं खूबसूरत से गाने के साथ। तब तक आप सभी अपने मैसेजेज अपने गाने की फरमाइश से अपनी दिल की बातें हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप इंस्टा या फिर कॉल के माध्यम से, आपके पास जो माध्यम हो उस माध्यम से। और तब तक इंजॉय करते हैं एक खूबसूरत सा गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में काफी खूबसूरत गाना और दिल तेरा आशिक। उम्मीद है कि ये गाना आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। और अब बढ़ते हैं आगे अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, जहां आपकी पसंद ही हमारी पहचान है। तो चलिए रुख करते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेज की ओर और जानते हैं आज के इस शो में कौन कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और किसके गीत की फरमाइश लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला आपकी पसंद और आपके मैसेज का, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजीम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आपके पास जो माध्यम उपस्थित हो आप उस माध्यम से शो में जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो मैसेज है, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और जयसवाल जी जुड़े हुए हैं। बबलू जयसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्णिया बिहार से है गाने की फरमाइश के साथ, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, में अनिश यादव जुड़ चुके हैं दुमरा यदुवंशी टोला सिवान से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। गणेश कुमार जी जुड़ चुके हैं पिपना नारायण से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय श्रुति मैम, श्याम बहादुर जी हैं संग्रामपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाजिरी की बात है तो बिल्कुल लग चुकी है। दीनानाथ यादव है कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हम मोहम्मद अली सारे वार्ड नंबर एक से, और कैसी हैं, गुड आफ्टरनून मैम, टाइम से आने के लिए शुक्रिया। और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी कल मेरा गाना नहीं बजा था तो आज प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नाम जरूर मेंशन करिए। कमलेश्वर कुशवाहा है जम्मू कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ। और गाने की फरमाइश है तो एक बार टैग करिए कि कल कौन सा गाना था और फिर हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून, और प्रोफाइल पे नाम नहीं दिख रहा है, सिर्फ परफेक्ट लिखा हुआ है, तो नाम पता जरूर मेंशन करिए आप अपना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्ते, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और हमारा एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, तो मेरी गाने की फरमाइश है प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। और साधु राय जुड़े हुए हैं छपरा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, देवराज कुमार है रेशम नगर भगैया जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, सिर्फ हाय और नाम मेंशन नहीं है, नाम जरूर मेंशन करिए आप कौन है कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दिलीप शाह जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजीम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि वेलकम सुरो की महारानी और माय फेवरेट सॉन्ग दिल तेरा आशिक, और ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ एमडी महमूद जी जुड़ चुके हैं केला से, बहुत बहुत स्वागत आपका, और लिख रहे हैं कि सुपर वेरी नाइस सॉन्ग। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्कार जी, मैं सोनू कुमार गौसिया से और मैं भी जुड़ गया हूँ शो से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। और आगे लिखते हैं कि दिल का हाल बताना नहीं आता हमें, ऐसे किसी को तड़पाना नहीं आता, सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। क्या बात है सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इरशाद मास्टर जी आ चुके हैं ननाव से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सुन रहे हैं कि रोशन टेलर के सभी लोग जुड़ चुके हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आगे लिखते हैं कि दिल तो हम लोगों का आशिक हो ही गया है रेडियो रिमझिम का, और जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे यहाँ राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और प्रमुख जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोष महोदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही अच्छा आपकी पसंद की, और आपकी पसंद की और अच्छा ना लगे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी मैम, हम भी जुड़ चुके हैं, हम पे भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल आप पे भी ध्यान है। और गाना सुनना है बंगला गाड़ी झुमके कंगना, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। नाम जरूर मेंशन करिए कि आप कौन है कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, महमूद अंसारी जुड़े हुए हैं जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और एक और यहाँ मैसेज है, और लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और नाम भी बताइए अपना साथ में कि आप कौन हैं, कहाँ से, ताकि हमें भी पता चले जो हमारे लिसनर हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आखिर हैं कहाँ से और हमें सुन कहाँ से रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की पहली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ रुख करेंगे। तो यहाँ भी संजय यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहली पहुँची हुई है, बबलू जायसवाल है जुड़े हुए पूर्णिया बिहार से और इनको सुनना है गाना, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: झूमका झुलनिया कजरा के धार सॉन्ग सुना लीजिएगा।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है ये आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे। नाम है इनका बबलू जायसवाल जी और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए और आगे बढ़ेंगे आगे। हाँ मैसेज है। और संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं सूरत से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि तू मेरी नींद चैन लौटा दे गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। और आगे यहाँ मैसेज है, राम कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश के साथ है, बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। और बालाघाट एमपी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रही है हमारे साथ में। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, गणेश कुमार है पिपरा नारायण से बोल रहे हैं कि सुपर सॉन्ग दी सुपर से ऊपर, ओहो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पप्पू कुमार जुड़ चुके हैं और बगही बाजार कटिया से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, मिथुन शर्मा जी हैं उत्तर टोला।

मैं देवराज कुमार रेशम नगर भैया जिला गोड्डा झारखंड से आप तमाम रेडियो रिमझिम के दोस्तों के लिए एक गाने की फरमाइश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गाने का बोल है, जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। ये गाना रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्त सुने और बताएं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान।

0: चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:29 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे लिखते हैं कि अगर किसी के सिर के ऊपर चावल गिर जाए तो उसे सरप्राइज बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। और अगर अचानक से गिरे तो बोल सकते हैं, शायद वैसे सामने वाले का गुस्सा कम हो जाए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी नमस्ते, मुकेश करवाल हिमाचल प्रदेश से और फरमाइश के साथ हैं। और गाने की फरमाइश से अपने लवर को धोखा दो हो। और आगे लिखते हैं कि बचपन से मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, बचपन से मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, मगर कभी कह नहीं पाया। आज तुम किसी और की होने जा रही हो तो दिल को रोक नहीं पाया। और इस मैसेज के साथ हैं मुकेश करवार जी हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद। सन्यासी रंजन बाबा आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, प्रेम दशिया है पटौना कुशनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिस सॉन्ग इज़ वेरी परफेक्टफुल। और जो भी लिसनर फरमाइश किए उनको धन्यवाद देते हैं। और मैसेज करने वाले हैं पप्पू ठाकुर जी बगही बाजार कटिया से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ इंद्रदेव जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाने का फरमाइश है, लिंक भेजा हूँ। बिल्कुल फरमाइश है तो लिंक भेजिए या फिर गाने का नाम लिख के भेज दीजिए, साथ में अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी आपकी आवाज़ के दीवाने हो गए हम। और दुर्गेश आजम जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ प्रीति रेदास जी जुड़ चुके हैं विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ मैसेज है, प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं कि प्रीति रेदास जी नहीं जुड़ी हैं तो जुड़ चुकी हैं वो भी, आपका इंतजार ख़त्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और एक और यहाँ मैसेज है और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, फीडबैक है, तो चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं ये।
1: बेस्ट आरजे सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज में वो जादू है जो सीधा रूह में उतर जाता है। और आज जब आपने अपनी पसंद से दिल तेरा आशिक वो गाना चलाया ना, तो सच कहूं दिल की धड़कनें बस वहीं रुक गई। ऐसा लगा जैसे कि लफ्जों में हमारे ही जज्बात बयां हो रहे हैं। इस खूबसूरत लम्हे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना चाहूंगा कि आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हैं, आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हैं, जानो हमारी या जान से भी प्यारी हैं। और दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कल भी हमारी थी आज भी हमारी हैं। और बहुत अच्छा और बहुत प्यारा शो हो रहा है आपका। एंड सभी दोस्तों से कहूंगा सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, सुनो दिल से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका शो में जुड़े। और पढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और कॉल वाले लोग, आप लोग कहाँ हैं, आप लोग भी कॉल करिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कल का शो बंद हो गया था तो आज ही मेरी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आज आपके गाने की फरमाइश है, प्ले कर देंगे, गाने का फरमाइश अपना भेज दीजिए। और यहाँ मैसेज है, मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो चले पहले बात करते हैं कौन है कहाँ से, जानते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो,
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल है रामा जी?
2: रामा जी प्रसाद ठावे राधे माधव से।
0: जी जी, क्या हाल चाल बा?
2: हाल चाल ठीक बा। हम तो अभी भागते नहीं गए, देखा नहीं कि कितना लोग कोरिया हो गए।
0: रुआ नहीं कि ना भाई,
2: तो साहब बाजार में जाओ तो इनका कोरिया हो जाए, फिर मैंने जाओ तो ठंडा है तो नहीं।
0: दिन भर तो दुकान में रहे के बानो।
2: तो गाना सुना दिया
0: जी, बिल्कुल बता दी।
2: लाली लाली ओठवा से बोलते ललैया हो की रसत लेला।
0: और सुनवाया की बुआ?
2: हमारी बेटी आज बारी नीतू कुमारी, बहू बारी अनुराधा गुप्ता, जितना रेडियो सुनता सब कोई हम बने रेवा बनी
0: हम तो बड़ नहीं बनी तो गाना प्ले कर दे ले बनी
2: नमस्ते
0: नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करने।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, रामा जी प्रसाद की फरमाइश थी, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश, ओल्ड एज कूल। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है। रवि तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका, फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जिंदगी की सफ़र में ये गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक्सपर्ट लोग सलाह दें, नया घर लेने के लिए सोच रहा हूँ, लोकेशन देख लूँ या पड़ोसन देख लूँ। तो ये तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपको लोकेशन अच्छा चाहिए या फिर पड़ोसन। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी, तो जो भी इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं ज़रूर जवाब दीजिए। सन्यासी रंजन बाबा जी को उलझे हुए हैं इस सवाल के बीच में। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, और मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्रमुख जी मेरा वेट कर रहे थे क्या? मैडम जी हाँ, वो आपका वेट कर रहे थे आपकी फरमाइश का। और मैसेज करने वाली हैं प्रीति जी। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है और गाने की फरमाइश भी है, और फरमाइश करने वाले हैं मिथुन शर्मा जी उत्तर टोला से। तो मिथुन जी, आपको पता है कि रेडियो रिमझिम पे कैसे गाने की फरमाइश होती है। भोजपुरी सुनने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी गाना उठा के भेज दीजिएगा, भोजपुरी में भी काफ़ी सारे अच्छे गाने हैं, तो अच्छे गाने की फरमाइश किया करिए, कोई भी गाना उठा के नहीं भेज दिया करिए। आपकी जो गाने की फरमाइश है हम नहीं प्ले कर सकते, और अगर ऐसा गाना सुनना है तो आपके लिए रेडियो रिमझिम नहीं बना है, आप यहाँ नहीं आइएगा। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है उससे पहले यहाँ मैसेज है, रोहित जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश चलिए प्ले कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं पप्पू ठाकुर जी बगही बाजार से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94453
3: और 90-97-61-60-02।
6: सेहत सही लाभ कई अभियान के अंतर्गत HPV टीका के बारे में, तो दोस्तों सरकार द्वारा HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई है और इसके बारे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और जिज्ञासाएं हैं, खास करके सोशल मीडिया और मोबाइल पर मिलने वाली अलग अलग जानकारियों के कारण कई बार भ्रम की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में आज हम आप सभी के द्वारा भेजे गए कुछ सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में हम उनकी जवाब भी साझा करेंगे। तो अगर आपके मन HPV टीका को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। और
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और काफ़ी सारे लोगों का मैसेज पहुँचा हुआ है। और यहाँ मुकेश खरवार जी हैं, लिख रहे हैं कि पड़ोसन को देखिए। और लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी ये भी बोल रहे हैं कि पड़ोसन देखिए, लोकेशन नहीं। और मुझे लगता है कि सन्यासी रंजन बाबा जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आगे लिखते हैं कि लगता है पूरा जून तो ये कहने में निकल जाएगी कि आज तो गर्मी कल से भी ज़्यादा है। और जून ही नहीं, जुलाई में भी यही कहना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में भी ऐसे ही मौसम होता है। अगर बारिश हो गई तो फिर तो ठीक है, नहीं तो गर्मी तो जुलाई में भी होता है। और आगे यहाँ मैसेज है कि गाना बदल दिए हैं, तो ठीक है गाना बदल दिए हैं, आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा गाना की फरमाइश करिए ही नहीं जो कि गाना बदलना पड़े। आप अगर चाहे तो आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, आप गाना सुन सकते हैं। अगर रेडियो से जुड़ रहे हैं किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी रेडियो से, तो वहाँ गाने की ऐसी फरमाइश करिए जिससे कि किसी को सुन के कोई भी आपत्ति नहीं हो। और क्योंकि बेशक पसंद आपकी है, लेकिन सुनने वाले अकेले आप नहीं हैं, बहुत सारे हैं, तो सबकी ख्याल करके आप गाने की फरमाइश जो है प्ले करिए और भेजिए हमें। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पति पड़ोसन की डेथ कैसे हुई, पत्नी दाल के भाव बहुत बढ़ जाने से ओ पागल हो गई। और दाल के दाम बढ़ने से कोई कैसे मर सकता है। और आगे लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से उसका डेथ सर्टिफिकेट देख के उस पर लिखा था कि डेथ ड्यू हाइपल्सरेट, पत्नी ओपन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में टॉपर है, इसके लिए ऐसा। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गीत की फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं। और मैसेज करने वाले हैं महेश कुमार जी बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका महेश जी। फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ अगली फरमाइश से पहले एक और मैसेज अभी अभी दस्तक दे चुके हैं वीरेंद्र कुमार जी हैं, बगही से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है संतोष कुमार जी सूरत से जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना हम है राही प्यार से नींद चैन लौटा दे। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, पप्पू ठाकुर जी की फरमाइश थी और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँच चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से जानते हैं। हेलो और कॉल रिसीव करते ही यहाँ कॉल कट चुकी है, तो चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है दिल्ली से, रवि तिवारी जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना, तो चलिए सुनते हैं, वॉइस पहुँचा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं ये। और यहाँ वॉइस में कुछ है ही नहीं, तो फिर वॉइस भेजे क्यों है आप। और गाने की फरमाइश है, आप जो लिंक भेजे हैं उसमें भी बहुत सारे गाने हैं, तो आप एक गाना कोई क्लियर करिए कि आपको कौन सा गाना सुनना है, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है राम कुमार जी जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना बंगला गाड़ी, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: बच्चे खुश

और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर गाने की फरमाइश है आपकी तो गाने का नाम लिख के भेज दीजिए, या फिर लिंक अगर भेज रहे हैं तो क्लियर लिंक भेजा करिए, कोई भी ऐसे नहीं भेज दीजिए, नहीं तो नाम लिख के ही भेज दिया करिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे, या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं आप अपनी आवाज़ में।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0975-75।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH-27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और 1:05 हो चुके स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ फरमाइशों का सिलसिला जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पता नहीं लोगों को खूबसूरत पड़ोसन कैसे मिल जाती है। हमारे घर के एक तरफ तो तड़का और दूसरी तरफ मंथरा रहती है। और यहाँ आगे मैसेज है, लिखे हैं मुकेश कुमार जी, मेरा नंबर कब आएगा? तो आपका भी नंबर आएगा, थोड़ा इंतजार करिए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम नया वाला गाना बंगला गाड़ी झुमके कंगना भेजा था आपको बजाने के लिए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आपके रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सोनी मैम आप भी अच्छी होंगी। और आज का प्रोग्राम, अभी तक जितने भी गाने की फरमाइश आई, सभी गाने बहुत ही अच्छे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग अच्छे गाने की फरमाइश किए। और आज की फरमाइश दोस्तों के साथ लेकर आया हूँ, उनकी भी फरमाइश से गाने की, और सारे दोस्तों से अलग अलग जगह से सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को, जिनका भी गाना आज आप सुनाएंगी, आज वह पार्टी देगा और उसका खर्च वही करेगा। अगर मेरा गाना आप प्ले करती हैं तो रेडियो रिमझिम पर, तो आज पार्टी का खर्चा मेरे तरफ से और मेरे दोस्तों के लिए होगा। और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को, उन्हें भी इनवाइट किया जाता है। और गाना है ये दोस्ती तेरे दम से है, गाने की फरमाइश के साथ है। और बोल रहे हैं कि स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार, बॉबी देवल, म्यूजिक डायरेक्टर है नदीम शर्वन, सिंगर उदित नारायण, सोनू निगम, और लिरिक्स है समीर जी का। और दूसरा गाना है याराना यार का, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तीन गाने की फरमाइश के साथ है। और चलिए कोशिश करते हैं आपके गाने की फरमाइश प्ले करने की। फिलहाल बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और मैसेज करने वाले हैं सोनू कुमार जी, सऊदी अरब से बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनू जी। मुस्तफ़ा है सऊदी से, लिख रहे हैं कि कल आप नहीं आए थे तो कल हम बिल्कुल समय पे हाजिर थे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गया जिसकी वजह से शो बंद हो गया, और लगभग 3 घंटे तक बंद थी। फिर 3 घंटे बाद वापस से ऑनलाइन आए थे आप सभी के बीच, और जो सुन रहे थे उन्हें पता है। और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी से, आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि 1 घंटा बाद चल जाएगा मेरा सॉन्ग, बिल्कुल आपका गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और मुझ पर सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पर सितम क्या किया, गाने की फरमाइश के साथ है। महमूद अंसारी जी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ आगे और भी सारे मैसेज है, और लिख रहे हैं कि मैम हफ्ते में 2 बार फरमाइश किया करिए, 8 दिन ज़्यादा लगता है। और मैसेज करने वाले अहमद अली जी, तो ये मैं नहीं की हूँ, ये मैनेजमेंट से जैसे रूल बने हुए हैं, मैं बस रूल फॉलो करती हूँ। और अगर ऐसा है तो फिर आप हमारे यहाँ जो संदेश मिला कार्यक्रम चलता है उसमें अपनी बातों को रखिए, शायद वहाँ कुछ हो जाए, आपकी जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं, और अगली फरमाइश है महमूद अंसारी जुड़े हुए हैं, उनको सुनना है गाना रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99393665930।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदल कर

0: इसका 1:21 हो चुके हैं, स्टूडियो गेड़ी में बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरह। और संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं कोलकाता से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश के साथ हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ मैसेज है लिखने की, लिख रहे हैं कि अधूरा मैसेज ना करिए, साफ सुथरे गाने के लिखकर गाने की फरमाइश भेजा करिए, भोजपुरी सॉन्ग की फरमाइश करिए, लेकिन अच्छे गाने की फरमाइश करिए। और हमारा भी भोजपुरी ही गाना है, लेकिन उसमें भी अच्छे गाने हैं जिसमें कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, ऐसे गाने की फरमाइश किया करिए आप लोग। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका पप्पू ठाकुर जी, जुड़े हुए हैं बगई बाजार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि खाली बैठा था तो सोचा आप लोगों को कुछ बता दूं। दुनिया में एक ऐसा जूस है जिसे कोई भी नहीं पी सकता, और वो है कंजूस। और सही कहा ना मैंने, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी, और यहाँ मैसेज है, और मेरी दिल दुआ करे ये गाना सभी रेडियो रंजन सुनने वाले को सुनवाना चाहता हूँ। और मैसेज करने वाले हैं महमूद अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ सोनी जी, तो आप किस बात की टेंशन में हैं ज़रूर बताइए। और सभी लिख रहे हैं कि सभी रेडियो रिमझिम वाले भाई से बोलिए कि मेरे लिए दुआ करें, तो बिल्कुल सभी लोग दुआ करें इनके लिए, और किस टेंशन में है जो भी इनकी टेंशन है वो दूर हो जाए। महमूद अंसारी जुड़े हुए हैं जयपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ा। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैडम जी मैं भी हूँ, बिल्कुल आप भी हैं, आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और प्रीति रेदास जी हैं लगड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: मैडम जी कमलेश्वर कुशवाहा जम्मू से, हमको गाना सुनना है अपने तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबी अली, लवारिस फिल्म से। और सुनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको, रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को, तो सुनवा दीजिएगा मैडम जी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे, नाम है इनका कमलेश्वर कुशवाहा जी, जम्मू से जुड़े हुए और लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ हैं से गाने की फरमाइश है, ये तो सच है कि भगवान है। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है। और गाने की फरमाइश करने वाली हैं प्रीति रैदास जी और लिख रही हैं कि मेरा है गाना। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है। प्रीति जी इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: दो शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है, फरमाई से भी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, मुझे मेरा भी हाजिर लगा दीजिए और मेरे भी गाने की फरमाइश है। मुकेश यादव जुड़े हुए हैं मोहम्मदपुर नीलामी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है कि उसे गोली मारे, तो आपके गाने की फरमाइश जो है बिल्कुल प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे आगे, हाँ और भी मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग नहीं प्ले होगा क्या, बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये दर्द लगले नगा है अपना सा, हम दवाई क्या, ये दर्द लगने लगा है अपना सा, हम दवाई का क्या करेंगे, मसला है ये कि हम तुम्हें भूल नहीं सकते, हमें रहने दो अपनी कैद में, हम रिहाई का क्या करेंगे। और रियासत अली कुशीनगर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज है, लिख रहे हैं कि तुम्हें बाहों में भरने का दिल चाहता है, तुझे प्यार करने को दिल चाहता है, काश दूर हो जाए ये फासले ये दरमियाँ हमारे, क्योंकि तुझे जी भर का देखने को दिल चाहता है। और मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं अमन जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि करिश्मा कुमारी जुड़ चुकी हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत करिश्मा जी, कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो फरमाइश है मुकेश खरवार जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से, और इनको सुनना है गाना अपने लवर को धोखा दो। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, आवाज़ पहुँच रही है, गाने को इन्जॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे मुकेश खरवार जी की फरमाइश थी हिमाचल प्रदेश से, और मैसेज कर रहे हैं कि धन्यवाद सुनी जी गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पूजा कुमारी जुड़ चुकी है और लिख रहे हैं कि अपना फोटो भेजिए ना छोटी दीदी, आपको देखना है। तो और आगे लिखते हैं कि धड़कन संभल गई मगर दिल का क्या करूं, इस दिल को आपकी ही तमन्ना है तो क्या करूं, आती है जब भी याद आपकी बंद आंखों में, आंखें खुली तो रोए जो सोए तो क्या करूं, सादगी और चाहत तुम्हारी सादगी पर ही मर मिटे हैं हम, वरना तेरे चेहरे तो और भी बहुत हसीन थे इस जहां में, न जाने कैसा ये रिश्ता है तुमसे, बस तुम्हारे मुस्कान से ही हम संवर जाते हैं, दिल की धड़कन बनकर तुम दिल में रह गए और हम सिर्फ तुम्हारे थे और बस तुम्हारे ही रह गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी, बने रही हमारे साथ में सुनते रही रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है, और ये क्या बात हुई कि शो में जुड़ते ही बाय बाय। और कृष्णा कुमार जी है, लिख रहे हैं कि ऐसा हो समोसा खाने के लिए बाय बाय करके चली गई, तो हमें भी समोसा खिलाइए और भेज दीजिए हमारे लिए भी समोसा। और कृष्णा कुमारी है पिपरा नारायण से, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं अपने लवर को धोखा दो सुपर डुपर सॉन्ग भोजपुरी सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो भी है वॉइस के माध्यम से, वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनको सुनना है गाना। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: हेलो मैडम नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सॉरी, ग्राम पोस्ट चौरी गुरैया टोला से वीरेंद्र कुमार बैगा, हमको सुनना है जिगर पिक्चर का गाना प्यार की कागज से। मैडम जी टाइपिंग की स्थिति में नहीं हूँ, अभी छानी में खपरा फेर रहे हैं इसलिए बोल के भेज रहा हूँ मैसेज।
0: और ये ज़्यादा अच्छा है अगर आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत कर जाती है, तो पढ़ने में भी समस्या होती है और गाना का नाम भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर वॉइस में आए तो ये ज़्यादा अच्छा है। और कोई कोई लिंक है कि लिंक गलत आप लोग भेज देते हैं, तो उससे भी बच सकते हैं आप लोग।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है, फरमाइश है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और मैसेजों का सिलसिला जो है वो तो कम नहीं हो रहा है, तो फिलहाल मैसेज को रोकेंगे और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना। और अगली फरमाइश है दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता गाने की फरमाइश के साथ है, नाम है इनका दुर्गेश जी, जुड़े हुए आजमगढ़ से और उनका सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे दुर्गेश जी आजमगढ़ से, और इन्होंने गाना सुन लिया है। और आगे हाँ मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे कि दीवाना ने पूछ लिया है नाम पता, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैसेज करने वाले हैं अमन जी। और आगे हाँ मैसेज ये लिख रहे हैं कि आप कितना पीस समोसा खाइएगा बताइए, अभी दुकान से मंगवा देंगे। और कितना पीस क्या है, ऐसे तो नहीं खाते हैं, गिन के कभी समोसा घर में आता है तो बस खा लेते हैं। आप जितना भिजवा सकते हैं उतना भिजवा दीजिए। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी। और आगे यहाँ मैसेज ये लिख रहे हैं सोनी मैम। और अंकित और प्रिंस जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और आगे एक और यहाँ मैसेज ये लिख रहे हैं कि सोनी जी आप हमारा गाना लिखी और दोबारा पढ़ के पानी पीने के बाहर हो, आप क्या कहना चाहते हैं एक बार क्लियर करिए। और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी, निजामुद्दीन सऊदी अरब से, और क्या हाल चाल है सोनी जी, और आप रेडियो लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ रेडियो पे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, आपका तबीयत सही है ना? बिल्कुल सही है। और मौसम कैसा है बताइए, तो हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म है और काफ़ी तेज़ धूप निकला हुआ है। और आपके उधर का मौसम का हाल चाल बताइए, कैसा है मौसम और आप कैसे हैं ज़रूर बताइए। शो में जुड़े बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो
1: मैडम जी, प्रणाम
0: जी। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम नगेंद्र माझी उर्फ दैवान जी या घर पकौली बदो आप ब्लॉक फुल बताइए, कैसे बोलता नहीं
0: जी, का हाल चाल बा?
1: ठीक बा मैडम जी, अपन समाचार बताई, हम तो सुनत नहीं रह समाचार रो मैंने खिसिया मत रहो हार गई लोग समाचार बता दो बताओ।
0: समाचार बिल्कुल बढ़िया बाटे।
1: हाँ सब के उनके पूछा ही के बात, खुशी के बात बात है जी।
0: जी जी बिल्कुल खुशी के बात बात। तब तो सोमार के स्कूल खुल जाए राउर।
1: हाँ मैडम जी, सोमार के मैंने सूचना तो हमारा लगे अभी कुछ नहीं के, अब हेडमास्टर हमारा मैंने ऐसी पटदारिया में कहा ये भौजी लगी हैं जन।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो कौन अथी हुई तो अपने फोन करी है, मैंने अभी कोई सूचना हमारे लगे नहीं के, अभी यह था कि सोमवार के 22 तारीख है नु। हाँ तो देखी का होता है, अभी बानू कल कल सांच ले मैंने कौन आदेश का होता है, ना आदेश हुई तो सोमवार के खुलब करी।
0: अच्छा मतलब चांस बाटे छुट्टी बढ़ेगी। और
1: मैंने हमारा घर वाई वो भतीजी भी हमारा छोट भाई के वो कहत रहा था कि बुटका कौन लड़का कहत रहा था कि छुट्टी बुटका बढ़ा था।
0: अच्छा अच्छा, शायद गर्मी ज्यादा बाटे होके वजह से बढ़ भी सका था, कुछ कहल नहीं के जा सका था।
1: हां ना ना सही बात बा, मान ले कि गर्मी बढ़ जाई तो छुट्टी बढ़ जाई, आ बढ़ल तो बढ़ नहीं बा, आ पहिलवा ना देखनी है एक हफ्ता पहले ही छुट्टी हो गई गर्मी के चलते।
0: चलिए ठीक बा, तो गाना कौन सुनवा दे?
1: हाँ ठीक बतन के ऐसा गावत नहीं हम
0: जी बिल्कुल गाए।
1: कसम क्या होती है, कसम क्या होती है कि तोड़ा ना जाए कि छोड़ा ना जाए, ओ कसम क्या होती है कि तोड़ा ना जाए कि छोड़ा ना जाए। मैडम जी
0: जी,
1: हाँ ये गाना हम कसम फिल्म के जननी पुरान फिल्म हो गया
0: जी जी।
1: हाँ ये गाना सुनाती दी, आ सबसे पहले रहुआ के सुनावे के चाहता नहीं जननी
0: जी,
1: आ जितना लोग सुनता रेडियो रिमझिम सब लोग के सुनावे के चाहता नहीं, हम पूरा एक परिवार अपना परिवार के साथ सुने के चाहता नहीं, बजा दी आ बजाओ का दी, थैंक यू ठीक बनू
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के भी समय कॉल के प्ले कर दिलवानी गाना। प्रणाम।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे देवान जी, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ जुड़े। और बढ़ेंगे आगे यहाँ, और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैम सॉन्ग प्ले कर देंगी मेरा भी, और मैं भी सुनना चाहता हूँ, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अंकित और प्रिंस। तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है, जैसे ही आपका एक सप्ताह होगा हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और एक और यहाँ मैसेज है, ठीक है, सोनी दीदी आप ही समोसा मांग लीजिए करिश्मा से। तो और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका गणेश कुमार जी। तो बिल्कुल समोसा मांगे, अब देखते हैं करिश्मा जी ला के देती हैं या नहीं। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मैम एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, बाद में दूसरा प्ले नहीं होता है। और बिल्कुल दूसरा बाद में प्ले नहीं होता है, एक सप्ताह में एक ही गाने की फरमाइश प्ले होती है, बाकी शो में आप डेली जुड़ सकते हैं और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। सोनू जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से, और इनको सुनना है गाना, काफ़ी सारे गाने की फरमाइश थे और हम प्ले कर रहे हैं गाना ये दोस्ती तेरे दम से है, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से, और गाना है उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज़ में। तो चलिए एंजॉय करते हैं सोनू जी की फरमाइश पे ये गाना रेडियो रिमझिम 90.4।

0: था तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जात, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में 2:13 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं लिख रहे हैं। नमस्कार जी आप सभी को, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए। और आज मेरा दोस्त है मुकेश कुमार जी, उनके फरमाइश का गाना बजाया आपने और आपको बता ही चुका हूँ कि आज का पार्टी का खर्चा उठाएंगे और वो बहुत खुश हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोले हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो है सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है एक, और वॉइस मैसेज है, साथ में नाम पता नहीं मेंशन है। और अब्दुल खुर्शीद अंसारी है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और गाने की फरमाइश है तो आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे, बने रहिए साथ में। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्कार, और आधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मोबाइल में चार्ज नहीं है मेरा, गाना बजा दीजिए। तो अभी दोपहर समाचार का समय हो चुका है और मैसेज करने वाले मुकेश यादव जी मोहम्मदपुर से जुड़े हुए हैं। और दोपहर समाचार के बाद आते हैं तो हम आपकी यानी कि फरमाइश जो है प्ले करते हैं, तब तक आपकी फ़ोन जो है वो चार्ज हो जाएगी। और जिनकी भी फरमाइश से अभी छूटी हुई है वो लोग एक बार फिर से आप सभी मैसेज करिए कि हमारी फरमाइश से बाकी है। और दोपहर समाचार के बाद आते हैं तो हम आप सबकी गाने की फरमाइश जो है फिर से पूरा करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के बाद, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिएगा रेडियो रिमझिम

0: नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीकों के कुल उत्पादन का 75% निःशुल्क वितरण शुरू करेगी। देश में अब तक 27,66,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 29,00,00,000 से अधिक डोज उपलब्ध कराई गई। देश में 81 दिन बाद प्रतिदिन कोविड के नए रोगियों की संख्या 60,000 से कम हुई। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 96.27% हुई। तेलंगाना में कोविड लॉकडाउन पूरी तरह हटाया गया। कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की घटती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। ये दिवस विश्व के लगभग 190 देशों में मनाया जाएगा। क्रिकेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच की पहली पारी के तीसरे दिन आज भारत कल के 3 विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और यूरो कप फुटबॉल के ग्रुप ए के मैचों में आज इटली का मुकाबला वेल्स से और स्विट्जरलैंड का सामना तुर्की से होगा। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में कल 21 जून से सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23-97-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी।
1: 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
0: केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। एक आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क

0: लोगों को पहला टीका और 5,10,00,000 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था।
1: देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29,10,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों को ये वैक्सीन या तो केंद्र सरकार ने मुहैया कराई या फिर उन्होंने सीधे कंपनियों से खरीदी है। इनमें से अब तक 26,04,19,412 टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 3,06,00,000 से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं।
0: देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 2,00,00,000 टीके लगाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने जानकारी दी है कि 18 एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण कल फिर से चालू किया जाएगा, जो स्टॉक में टीकों की कमी के कारण समयबद्ध रूप से रोक दिया गया था। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 3,680 टीकाकरण सत्र हुए, जिसमें 3,81,035 लोगों को टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र में टीकाकरण की कुल संख्या अब 2,75,76,177 हुई है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: बिहार में अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से 33,64,000 वैक्सीन 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाई गई है। इस बीच राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। औरंगाबाद जिले के सूफी असगर इमाम कादरी ने लोगों से बेहिचक टीका लगवाने की अपील की है। इसी जिले के कलमी इलाके की मसूदा खातून का कहना है कि उन्हें टीके लगवाने से बाद कोई परेशानी नहीं हुई। बिहार में सरकार अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। औरंगाबाद जिले के जाने माने सूफी संत असगर इनाम कादरी ने लोगों से बिना किसी भय के टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की है।
3: कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी, तरह तरह की परेशानियां होंगी, ये सब गलत बातें हैं। दुनिया के सारे लोग मर जाएंगे तो फिर रहेगा कौन? ये किसी की साजिश नहीं है। वैक्सीन तमाम मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को लगवाना चाहिए।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 13 दिन से देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,00,000 से कम रही है। पिछले 38 दिन से नए रोगियों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 87,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 58,419 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.27% है। अब तक संक्रमित हुए कुल लोगों में से उपचाराधीन रोगियों की संख्या केवल 2.44% रह गई है। फिलहाल लगभग 7,29,000 लोग कोविड से संक्रमित हैं। देश में अब तक 2,87,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल कोविड से 576 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,86,713 हो गई है।
0: देश में अब तक 39,10,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कल 18,11,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कोरोना की जांच के लिए देश की 2,661 प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा रहा है। इनमें से 1,271 प्रयोगशालाएं सरकारी जबकि 1,390 प्रयोगशालाएं गैर सरकारी हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 110 नए कोविड रोगियों का पता चला है। इस दौरान 365 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 30 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस समय राज्य में कुल 2,442 रोगियों का उपचार चल रहा है।
4: राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,442 हो गई है। राज्य के 52 जिलों में से 22 जिलों में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। हर दिन 70,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। इस बीच संकट प्रबंधन समितियां, फील्ड कर्मचारी भी टीकाकरण के लिए गांव-गांव अभियान चला रहे हैं। राज्य में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की पहल की जा रही है। कुछ गांवों में टीकाकरण केंद्र पर निमंत्रण के रूप में पीले चावल दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ जिलों में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने ढोल और नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया जा रहा है। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: तेलंगाना सरकार ने आज से लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया है। राज्य में कोविड संक्रमण दर कम होने के कारण यह निर्णय किया।

0: किया गया। सरकार ने लोगों से कोविड संबंधी उचित नियमों के पालन की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार कल से कोविड प्रतिबंधों में और छूट देने जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कल कोरोना कर्फ्यू के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आदेश के अनुसार 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल और रेस्तरां सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे तक खुले रहेंगे।
1: नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शॉपिंग मॉल और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ रात के 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। दूसरी दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अब हफ्ते में 5 दिन खोले जा सकेंगे। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को 2 घंटे कम करने का फैसला किया है, जो फिलहाल कोरोना के हालात के मद्देनजर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है। अब राज्य भर में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। रात का कर्फ्यू 9 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि कल से टीकाकरण का एक नया चरण शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से लोगों को जल्दी टीके लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें कल से शुरू हो रहे मुफ्त टीकाकरण का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम 6 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: तमिलनाडु में प्रतिबंधों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 28 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोविड की स्थिति को देखते हुए जिलों को वर्गीकृत किया गया है। उधर दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में छूट 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली आपात प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रतिबंधों में छूट देने के साथ ही सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब और योग गतिविधियों को आयोजित करने की कल से अनुमति दे दी है। प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल सवेरे 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। 50% क्षमता के साथ रेस्तरां सवेरे 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
12: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम। सुनो दिल।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
8: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे। अपना तो मैसेज पहुँचा हुआ है, सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, इरशाद मास्टर धनाव से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है और लिख रही हैं कि आप अपना फ़ोटो या फिर अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दीजिए छोटी दीदी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको देखना है तो हमारे रेडियो रिमझिम के फेसबुक पेज पे चले जाइए या फिर इंस्टाग्राम पे, वहाँ हमारे सारे आज़े जितने भी हैं रेडियो रिमझिम के टीम सबकी फ़ोटो मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकती हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ी। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा दिन में सो रहा है तो समझ ले कि वो रात में माँ की नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ विष्णु कुमार जी जुड़ चुके हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत विष्णु जी आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज और बहुत सारी फरमाइश है, तो चलिए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है कोलकाता से संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचे, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे। संजय कुमार जी कोलकाता से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ प्रमोद यादव जुड़ चुके हैं मुंबई से, लिख रहे हैं राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ एक और मैसेज है, और लिख रहे हैं कि माई फेवरेट सॉन्ग और आपको डेडिकेट है, और इस गाने की सभी लाइन बहुत ही प्यारी है। और मैसेज करने वाले हैं अमन जी, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहां से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम हरेंद्र वर्मा है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं हरेंद्र जी?
1: फिलहाल हम यहाँ कोटला से बात कर रहे हैं जी। हमको जानवर फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: ये अक्षय कुमार का, क्या बोलता है, तुझे ना देखो तो चैन ना आए,
0: तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, वही वाला।
1: मैं तो फिलहाल यहाँ मतलब बिहार में हूँ, मैं तो पठान रहने वाला हूँ। अभी यहाँ आया घर बनाने, तो आपका डेली सुनते है गाना, तो डेली ट्राई करते हैं, आज मिला है आपका नंबर।
0: चलिए, लेकिन ये गाना तो जानवर फिल्म से नहीं है।
1: हाँ।
0: रंग फिल्म का गाना है, प्ले कर दें?
1: प्ले कीजिए।
0: चलिए, कॉल किए शो में, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97746164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का 3:03 हो चुके स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ूंगी तो मैसेज है लिख रहे हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, नाइस सॉन्ग। रोहित जी है देहरादून से, एक और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैडम जी, मुझे भी समोसा खाना है और समोसा आया कि नहीं, तभी तक तो नहीं आया है। और उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि जानवर मूवी से तुझे ना देखूं तो दिल घबराता है। जी हाँ, गाना तो ये है जानवर मूवी से, लेकिन उनकी फरमाइश थी कि तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं, और ये गाना रंग फिल्म में है। और मैसेज करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि मैडम जी प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और हमारा सॉन्ग कब प्ले होगा, और हमारी गाना प्ले करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं वीरेंद्र कुमार जी, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश का, तो चलिए आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी। और मुकेश यादव जी हैं मोहम्मदपुर से, और इनको सुनना है गाना अखियों से गोली मारे, तो चलिए अपने गाने की फरमाइश को इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे मुकेश यादव जी और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम अगर समोसा आया तो बेईमानी मत करिएगा और लिस्नर को भी थोड़ा थोड़ा बांट दीजिएगा। बिल्कुल बेईमानी करके नहीं खाएंगे और आप सभी को जरूर देंगे। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमको भी एक गाना सुनना है। और नई मंसारी जुड़े हुए हैं जामतारा से, बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश है तो हमें भेज दीजिए अपनी फरमाइश को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय सोनी जी, मैं एमडी जावेद पुणे महाराष्ट्र से और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और उनके साथ में है विनोद जी, तंजेब बंखेरे, मामा दिनेश भगत और मोहरदास जी, अनंत दास जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुंचा हुआ है तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: दिव्या मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कुदूस पागोपाली से बोल रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है, आप चाहत की लग जाएगी तेरा दिल भी मचल जाएगा। प्लीज, मेरा घर है पागोपाली पोस्ट डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, मुझे ये गाना सुनना है और अपने दोस्त फैयाज अहमद को सुनाना है जो पागोपाली मोड़ पर मेडिकल स्टोर में रहते हैं। मेरा गाना।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।

104.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और 3:20 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ आगे बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा नाम धनराज कुमार है और महचा से जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि दोपहर में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती, कूलर की हवा भी अब कम लगती है, गर्मी हर दिन नया सितम करती है। गर्मी का मौसम सबको याद रहेगा, पसीने से भीगी हर दिन याद रहेगा और आइसक्रीम देखकर दिल खुश हो जाता है। गर्मी में यही असली प्यार नज़र आता है। और मेरा नाम धनराज कुमार है, महचा से बहुत बहुत स्वागत है आपका धनराज जी। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्कार जी आप सभी को, और अभी जो गाना चल रहा था बहुत ही खूबसूरत गाना था, फरमाइश करने वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनी मैम आपसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, दिनेश मिश्रा जी समोसे की बात कर रहे हैं और कहीं मैंने पार्टी की बात थी कही थी उसी बारे में तो नहीं है। नहीं, ये उसी बारे में बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी करिश्मा जी जुड़ी हुई थी पिपरा नारायण से और वो समोसे का पार्टी दे रही थी और बोली कि आप कितना पीस खाती हैं बताइए, हम आपको उतना भिजवाते हैं। और उसी समोसे की पार्टी की बात चल रही है और यहाँ ना समोसे की पता है और ना ही करिश्मा जी का, दोनों चीज़ ना पता है, करिश्मा जी भी और समोसा भी। और आगे यहाँ मैसेज है और मैसेज करने वाले हैं ये सोनू जी सऊदी अरब से। एक और यहाँ मैसेज है और नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ हेलो का मैसेज आया, नाम पता जरूर मेंशन करिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। शमशेर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और एक यहाँ मैसेज है, प्रेम अदेशिया है पुराना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि 4 बजे से गोपालगंज से चलें तो 6 या 7 बजे तक पहुँच जाएँ, तो 4 बजे से गोपालगंज से चल के जाए के कहाँ बा ये बताएं, फिर हम बताएं कि 6 या 7 बजे तक पहुँच जाएँ कि ना, और कहाँ पहुँचे के बाद ज़रूर बताएं।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सभी सुन रहे थे पंजाबी सॉन्ग, काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश थी और साउथ अफ्रीका से गाने की फरमाइश पहुंची थी सोनू कुमार चौरसिया जी की तरफ से, जो कि रहने वाले हैं रामपुर खरिया से। और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुँच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका गाना बजाने के लिए। और बढ़िया आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये मैसेज नहीं पढ़ी है, और लिख रहे हैं कि का सोनी जी समोसा का इंतजार में रहो, प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। और ठीक कोनो बात ना, प्रोग्राम ख़त्म करके रहुआ हमारे दुकान पे आ जाए और हम गरम गरम समोसा खिला दें। और मैसेज करे वाला वानी प्रेम मदेशिया जी पुराना कुशनगर उत्तर प्रदेश से, तो भैया हम जितना खर्चा करके रहुआ लगे आए उतना खर्चा में हम यह 4 दिन समोसा खाए वो भी भर पेट। तो फिर कभी अगर रहुआ जेने आए तो ज़रूर आए रहुआ दुकान पर समोसा खाए। फिलहाल

0: खातिर हम यही जैसा खा लेम। और समोसा इसे भी हम बाहर की चीज़ बहुत कम ही खाए नहीं, ऑफर मिला रहे तो फ्री के चीज़ रहे तो सोचने हैं कि ले ली, ये खतरा और कुछ ना। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं कि हेलो जी गुड इवनिंग, मैं भी जुड़ गया हूँ, टुनटुन यादव है सूरत गुजरात से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम सुना था नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा बटे, और एक्चुअली बहुत ही अच्छा बात बा कि रेडियो रिमझिम बहुत ही अच्छा लगा था और गाने की फरमाइश के साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो में जुड़ा फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम की। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, वो है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। और मैसेज करने वाले हैं MD महमूद जी केरला से।
1: हाय हेलो, मैं MD महमूद केरला से, आज मुझे भी एक गाने की फरमाइश है और गाने का बोल है, मतलबी है लोग यहाँ पे मतलबी बेगाना। और डेडिकेट रेडियो रिमझिम पूरी टीम को और उनके साथ साथ लालगंज बजाजी रोड अभिनंदन टेलर के पूरी टीम को और रेडियो रिमझिम की जितने भी लिसनर हैं सुनने वाले सभी को।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, श्याम बहादुर जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाना सुनना है विवाह फिल्म से कोई भी, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। फिलहाल इंजॉय करते हैं श्याम बहादुर जी की फरमाइश को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, विवाह फिल्म से मिलन अभी आधा अधूरा है।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे विवाह फिल्म से, मिलन अभी आधा अधूरा है, और गाने की फरमाइश करने वाले थे श्याम बहादुर जी देहरादून से, और मैसेज है इनकी तरफ से गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी आपकी तरफ से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मिलन अभी आधा अधूरा है, नाइस, और इनका तो शादी हो चुका है फिर भी किस मिलन की, अच्छा किससे मिलने की मन कर रहा है। तो श्याम बहादुर जी की तरफ से गाने की फरमाइश सिर्फ इतना थी कि विवाह फिल्म से गाना सुनना है, और मैंने ये गाना बजाया था, मुझे नहीं पता था कि उनका शादी हो गया। फिर इसमें और भी सारे गाने हैं, मैं उससे प्ले करती, फिलहाल वही बताएंगे क्योंकि उन्हें भी ये गाना काफ़ी पसंद आया। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी जाते जाते कॉल कर दे क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी अब तो मिलन हो गई है, बताइए कैसा शादी रहा दिव्या जी का। तो शादी बिल्कुल बढ़िया रहा दिव्या जी का, क्योंकि शादी में हम गए नहीं लेकिन फ़ोटो देखे हैं, काफ़ी बढ़िया है, और कुछ दिन बाद वो यहीं रहने आने वाली हैं। और दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, रहीम आलम जुड़ चुके हैं बेंगलोर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी रहीम से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मेरा भी गाना है बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। और गाना है लैला ने कहा मजनू से, और गाने की फरमाइश के साथ है जावेद जी पुणे महाराष्ट्र से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

और यहाँ थैंक यू का मैसेज पहुँच चुका है जावेद जी की तरफ से, और यहाँ इरशाद मास्टर जी हैं, लिख रहे हैं कि वही मुझसे कह दो सुपर सॉन्ग मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बने रहिए साथ में, एंजॉय करिए गाने को।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और 3:53 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 7 मिनट है हम सभी के पास। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्यार का मौसम है, वादों का महीना है, भोले की दुनिया को तेरे साथ ही जीना है। और मैसेज के साथ हैं इशाद मास्टर जी धनाव से, और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो फरमाइश आप किधर गए, और यहाँ साधु राय जी जुड़े हुए हैं छपरा से, और इनको सुनना है गाना राधे श्याम रसिया के आवाज में, खुलल केसिया के हवा देदा। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए। रेडियो 90.4 FM पे

और यहाँ धनेश मिश्रा है लिख रहे हैं कि गाना घोटाला करते करते समोसा भी घोटाला हो गया, शायद हो सकता है, बोला जाता है ना कि जो करते हैं वो वापस मिलता है, शायद इसीलिए समोसा घोटाला हो गया। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी, और यहाँ अभी अभी दशक दिए हैं नायरा भारती, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफाइल पे नाम दिखा रहा है पर अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे। नाम है इनका साधु राय, जुड़े हुए हैं छपरा से, और गाना इन्होंने सुन लिया। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है, और घड़ी भी इशारा कर रही है कि समाप्ति का समय हो रहा है। तो चलिए आखिरी कॉल लेते हैं, कौन है कहां से जानते हैं। हेलो
1: जी। हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। जी का हाल चाल भाई साथ जी?
1: अरे सर, 9 बजे से जो रेडियो मोबाइल चलता है।
0: अच्छा, मोबाइल ऐप से सुने नहीं?
1: हाँ, तो ऐप से ना सुने जाए, मोबाइल से। अब बताइए, दिव्या जी की शादी हो गई है?
0: शादी तो हो गई। देखिए,
1: हमने को मिठाई वाले ना मिलल, हमने को मिठाई वाले ना मिलल, इतना दिन जुड़ नहीं जा रहा नहीं जा साथ से।
0: हमने को तो खुदे लास्ट में पता चला है।
1: रहो सब एक ना,
0: हमने हो गया ना पता चला है। तब हमने के क्या कर सन, और ऐसा टाइम में बुलाई नहीं है कि पहले से तो बुलावल जला तो प्लानिंग रहे ला। अब लास्ट टाइम में कोई पूछी तो आदमी के दूसर काम भी रहे ला।
1: भाई तो बात है,
0: चलिए ठीक बा।
1: मुबारक बा। और जाते जाते गाना सुना दे बिना मूवी के। जाने वाले वो जाने वाले, तेरा अल्लाह निरेबा, तेरा मौत, तेरा मौला निरेबा,
0: और डेडिकेट भी रही
1: रवा के, और सारे रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों के।
0: चलिए तो प्ले कर दिल बनी गाना।
1: आप पूरा गाना बजा दे मुख्य जी का।
0: जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने। आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 4 बज चुका है और समय इशारा कर रहे हैं कि दीजिए जाने की इजाजत। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि आप बहुत ही गड़बड़ घोटाला कर रही हैं, और घोटालेबाज हो गई हैं आप। और मैसेज करने वाले हैं उमाशंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बाय बाय। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जाही जात नहीं तक कल टाइम से आ जाए। मौके बाय, बिल्कुल कल टाइम से आए, और कल हटे संडे, और संडे के चले ला भोजपुरी एक्सप्रेस कार्यक्रम जॉन की आई 2 बजे से। और यहाँ मैसेज बांटे, वहीं पे मिलते हैं, और भी सारा मैसेज पहुँचा हुआ है, फरमाइश भी है। तो जिनकी भी फरमाइश आज प्ले नहीं हुई है वो लोग जुड़िएगा कल इसी शो में इसी समय पे, यानी 12 से 4 के बीच में। कल पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। फिलहाल दीजिए इरशाद मास्टर जी की फरमाइश के साथ जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: रेखा गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
6: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
11: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
13: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।
14: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
15: रेडियो रिमझिम।
14: सुनो दिल।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
1: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
4: और 9097-6160-02।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: चाची तू काम दुनिया में बारू अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगे बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कोईले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हो और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
2: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59 536 या 9656 57 902।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: फर्नीचर। अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
1: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160002।
5: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी फरमाइशें और आपकी पसंद की गीतें सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफ़र को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: नमस्कार
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम सारा सामने।
1: जी मैं सुदीप बोल रहा हूँ, कोई जमा जिला देवघर झारखंड से। मैम
2: जी, जी कैसे हैं सुदीप जी?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया हैं।
1: उधर का मौसम का क्या मिजाज है मैम?
2: मौसम का तो हाल मत पूछिए, अभी ही लग रहा है जैसे कि दोपहर का 1 बज चुका हो।
1: जी जी, इधर भी वही हाल है मैम। 2 दिन पहले बारिश हुई थी हल्के फुल्के।
2: इधर भी वैसे ही हुई थी, बारिश तो नहीं है बोलेंगे लेकिन बूंदाबांदी हुई थी।
1: जी जी, आप सोनी मैम बोल रहे हैं ना?
2: जी जी। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: आज भी पुराने फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, कश्मीर की पहली फिल्म का गाना सुना दीजिए।
2: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, गीत के बोल हैं इशारों ही इशारों में दिल लेने वाले।
2: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको आपके रेडियो रेंजियम की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रेंजियम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
2: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: जी मैम
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंजी में।
0: हाँ, साथ मास्टर ग्राम धना से।
1: जी, क्या हाल चल बा?
0: अरे हम ही तो ठीक है, बताऊँ अपन बताई।
1: हम बढ़िया बा।
0: हाँ, दो बड़ी कड़क निकल बा।
1: हाँ जी, क्या कहल जाए, तो बातें अलग बाटे।
0: हाँ, एक बार फोन लगा फिर कट गई, बहुत बार लगे नी फोन जननी।
1: उठे से पहले ही कट गए हटे।
0: हाँ हाँ, कहिए कि भाई कितना देरी अगर उठाए में।
1: और सब बताए?
0: सब ठीक है बा, लगन पगन सब बिता ले रही हमने के, अब काम में लगल बन जाए दो चार पाँच गो लगन बा।
1: तो गाना कौन सुनवा दिया आज?
0: एगो हमारे आजम पोता बा, बड़ी तंग कर बहुत, नंबर याद कर लो।
1: अच्छा,
0: दिव्या जी से बातो कर ले रहे। गाना सुना दी नगीना मूवी के। आज कल यहाँ कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके।

0: बाद
1: और सबसे पहले रवा के सुना के बाद और रेडियो रेंजी में रामा जी के और मनान भाई के और सगीर आलम बरान और जितना हमने के बंजार दर्शन टेलन में घना सुरन जाए सब भी सुनब जाए।
2: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल के।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन भी रखती है तो कहते हैं हेलो।
12: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: जी मैडम, हम गोपालगंज भोजपुर से बोल रहे हैं।
1: जी जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह पड़ेगा, भोजपुर।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं दुर्गेश जी आप?
0: जी मैडम, मैं जॉब करता हूँ यहीं से।
1: अच्छा,
0: अपना खुद का बिजनेस।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आपको?
0: जी हमको गाना सुनवा दीजिए भोजपुरी कोई अपने तरफ।
1: आवाज में सुनना पसंद करेंगे?
0: जी हम पवन सिंह का कोई सैड सॉन्ग हो।
1: पवन सिंह का सैड सॉन्ग कोई भी? और सुनवाना भी है?
0: जी हमारे दोस्त है जो अंशु सिंह है, हैप्पी सिंह है, और बहुत सारे दोस्त।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
0: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माइक्रो, इसमें कॉल किए।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन बिंदी रखती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो।
2: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन

सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: विकास कुमार, अंतापुर
1: जी। क्या हाल चाल है विकास जी?
0: है बढ़िया है जी, बहुत आज गर्मी है, काम करने का मन नहीं कर रहा है।
1: गर्मी तो काफी है,
0: आज बहुत धूप है, बहुत ज्यादा
1: हवा नहीं चल रहा है ना इसलिए।
0: और बताइए मैडम, आप कैसी है मैडम?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: अच्छा, अब खाना वाना खा लिया?
1: हाँ जी, खाना पीना हो गया है, खा के ही घर से आते हैं हम।
0: अच्छा,
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: आज गाना सुनवा दीजिए, वो गाना नहीं है, क्या बोलते हैं, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, वही सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: अब मेरे दोस्तों को और जितने रेडियो रेंज में सुनने वाले हैं सबको शुरुआत, सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: ये बजे बजाइएगा ना,
1: ये शाम को चलेगा 5 से 7 के बीच में।
0: 5 से 7 आज के बीच में ना
1: जी, और रिपीट चलता है
0: 5 बजे से स्टार्ट कर दीजिएगा।
1: हाँ 5 बजे, ये नहीं बोल सकते कि 5 बजे ये स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है। और सुबह रिपीट चलता है 9 से 11।
0: अच्छा, 9 से 11।
1: हाँ, और रात को चलता है 12 बजे से।
0: अच्छा,
1: 3 टाइम चलता है, आप उसमें से कभी भी सुन सकते हैं।
0: आज मेरी छोटी वाली लड़की बोल रही थी कि आपसे बात करने के लिए, तो हम तो आ गए काम पर, आज मैं छुट्टी में था।
1: अच्छा,
0: तो मेरे को ठेकेदार बुला लिया कि आ जाओ, सेंटरिंग वेंटरिंग ठोकना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इतना गर्मी पड़ता है कि आने का दिल नहीं करता है।
1: क्या करिएगा, गर्मी है ही ऐसा,
0: मजबूरी जो करे।
1: चलिए फिर बात होगी।
0: ठीक है ठीक है
1: ठीक है।
0: बहुत अच्छी कोशिश की है, आपका नंबर लगाते लगाते बहुत,
1: काफी सारे कॉल आते हैं ना, सबसे बात हो ही रही है 11 बजे से।
0: फिर मैं बजरंग बली के नाम लिए कि आज आज मैडम से बात हुआ कि नहीं होगा।
1: चलिए
0: कोशिश किए तो मैंने लग गया। ठीक है, बजा दीजिएगा।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसमें कॉल।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बस आपसे तो लगता है कि कितने दिन हुआ बात ये हुए। आज कैसे कैसे
1: चलिए, जैसे जैसे करके आज हम भी बात कर लिए।
0: नहीं तो मैं तो आपके शो से भागने वाला था कि अब तो सोनी जी से बातें नहीं होती है।
1: नहीं, भागिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि कब आने वाले हैं।
0: तो
1: मैं मार सकती हूँ,
0: उसी इंतजार में तो कॉल कर दिए।
1: कॉल किया और बात हो भी गई। कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने वाले जुट जाती है।
0: बात वही है,
1: बात वही है। बस
0: सही में मैं आज मैं करने वाला नहीं था। मैं सोचा कि चलिए एक बार करते हैं।
1: और बताइए, हाल चाल कैसा है?
0: बस कट रहा है जैसे तैसे।
1: तो छुट्टी होगी आप लोग?
0: हाँ छुट्टी है, आप लोगों के सहारे कट रहा है।
1: तो गाना कौन सुनवा दे आज?
0: आज हमें सुनवा दे आप वो जो शिल्पी राज का है, लवर के धोखा दो एक बार मौका दो। अनारी के जैसा एकदम आप तो ढूंढ के निकाल ही देंगे।
1: नहीं, जो पता है वो बता देते हैं, जो नहीं पता होता वो पूछते नहीं है कि किसके आवाज में है चाहे क्या है।
0: नहीं पता है वो भी सोनी जी से निकलने वाला नहीं है।
1: थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने से, तो भगवान भी मिल जाएंगे। फिर भी गाना है,
0: जब जो गाना समझ में नहीं आता है वो भी बच जाता है। तो ये तो
1: पता है,
0: ये तो रोज की है।
1: जी,
0: और सब
1: बढ़िया है।
0: आज भारती जी कहाँ है?
1: भारती जी भी यही है, बैठी हुई है पास में ही।
0: ठीक है, भारती जी भी सही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है कि आपसे थोड़ी लगाव हो गया है, भारती जी भी सही है।
1: तो अब क्या पुराना आदत छूटते छूटते ना छूटता है?
0: तो आदत छुड़ा रहे क्या धीरे धीरे?
1: नहीं छुड़ा नहीं रहे, मतलब बात की बात है, छुड़ा कहा रहे, अभी तो है ये है।
0: हाँ ना सही है। तो वो जिस दिन आप बीच में एक बार और बात किए थे कि आधे आप बात किए थे, आप आधे भारती जी करी थी, वो शो आपका नहीं चला?
1: नहीं चला है, 3 कॉल उसमें से बच गया है। चला तो था, उसी दिन चला था। नहीं, आपका गाना है और 2 गाना और है जो कि आज तो शायद नहीं चलेगा, कल में चलेगा।
0: तो ठीक है, हमारा ही गाना पेंडिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं।
1: वही तो बोल रहे हैं कि तो आदमी पीछे रखता है ना बाकी।
0: अब आज उस दिन का सुनाएंगे तो फिर आज का फिर
1: पेंडिंग में रहेगा।
0: वो सब हमें पता है
1: ना, फिर रिकॉर्डिंग हुई है तो चलेगी, बस आप सुनते रहिए।
0: तो आज पूरे आपका रिकॉर्डिंग है कि भारती जी भी है?
1: नहीं, वो भी रहेंगी।
0: तो आधे आधे वो इसे सुनाएंगे ना मिला के, एक साथ तो दोनों नहीं चलेगा ना।
1: मेरा टाइम होगा शो का तो हम चले जाएंगे शो के टाइम में।
0: अच्छा
1: अच्छा ठीक है,
0: चलिए ठीक है, बहुत बात हुआ।
1: तो गाना आपकी प्ले कर रहे हैं?
0: ठीक, थैंक यू मैम,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद तुमने कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160002।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
13: जब फोन दे रखती है तो कहते हैं हेलो हेलो।
14: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टून 90.4 FM में।
0: गाना सुनेगा मैम?
1: जी गाना तो सुनाएंगे। बता दीजिए नाम गाने का।
0: सैड सॉन्ग सुनना है।
1: सैड सॉन्ग कौन सा?
0: कोई सा जो अच्छा हो।
1: कोई सा भी तो नाम बता दीजिए, कोई सा भी गाना का।
0: याद नहीं है,
1: ऐसा थोड़ी होता है।
0: नीलकमल सिंह का सुना लीजिएगा।
1: नीलकमल सिंह का? और आप रवि बात कर रहे हैं? आप रवि बात कर रहे हैं?
0: हाँ
1: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा?
0: हाँ यही पे है जिया जी।
1: अच्छा जिया जी का, चलिए।
0: और सुनने वालों
1: तो प्ले करे गाना?
0: हाँ प्ले करिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसने कॉल किया।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: मैं अहमद अली, शरियाबाद नंबर 1 पे। क्या हाल चाल है मैम?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? तबीयत पानी अच्छा है ना?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: बहुत गर्मी पड़ रही है मैम।
1: गर्मी तो पड़ रही है, क्या किया जाए बताइए गर्मी से बचने के लिए।
0: गर्मी से बचने के लिए जितना हो सके अंदर रहे, घर के अंदर, और नींबू पानी पिया करें।
1: नींबू पानी तो नहीं पी सकते अभी, जहाँ है वहाँ।
0: क्यों, लेके जाइए ना मैम।
1: लेके जाएंगे फिर थोड़ा सा अस्कत हो जाता है ना।
0: बोतल में घर से ही बना कर लाया कीजिए और फ्रिज व्रिज हो तो रख दीजिए और दिन भर पिया कीजिए।
1: फीस तो नहीं है उससे,
0: अच्छी है ना मैम? अंदर तो एसी है, जरूरत नहीं है।
1: एसी है लेकिन अंदर सब कुछ पानी वगैरह नहीं जाता है ना, कहीं गिर उड़ गया तो फिर मशीन है, दिक्कत हो जाएगा।
0: कुछ नहीं गिरेगा, संभाल कर रखिएगा सर।
1: अब वो तो हम रख सकते हैं, लेकिन अब एक हम लेके जाएंगे तो फिर और भी।
0: और ऐसी नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग ऐसा किया कीजिए, पानी पिया कीजिए।
1: पानी तो पीना है, जितना हो सके पानी पिए, बिना मतलब का घर से बाहर ना निकले बिना जरूरी। क्या
0: बहुत गर्मी है?
1: गर्मी तो है ही, साथ में
0: बुला कर रख दिया हूँ मैम। डेली मैं खुद पीता हूँ और बच्चे को भी पिलाते हैं, अपने घर पर पिलाते हैं नींबू पानी सबको।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनवा दें?
0: गाना हमको तो रेडियो पर बज रहा है, यही सुनवा दीजिए, सुना दे रहे हैं आपको। काफी के चैनल पर बज रहा है। सुनाई दिया गया
1: हीरो फिल्म का गाना है क्या?
0: जी जी जी।
1: पूरा तो समझ में नहीं आया, शायद तू मेरा जानो है, तू मेरा दिल है, वही गाना है ना?
0: जी जी मैम
1: जी।
0: दो मूवी का है, जयकर आपका।
1: और सुनवाना भी है गाना?
0: सुनवाना तो जरूर है। सबसे पहले तो आपको, अख्तरी को, कमरान भाई को, और दिलीप भाई को, राघव जी को, और जो भी रिम रिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी।
1: चलिए
0: बहुत का शुक्रिया।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87894 18744।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।
13: प्रसाद क्लिनिक,
14: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
13: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
14: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: Jab phone ring de bajte hai to kehte hello.
18: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 80 29 94 911। जी हाँ 80 29 94 911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: हाँ जी हेलो है
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: आपको नमस्ते, आप सुनी
1: जी, लाल बहादुर बात कर रहे हैं
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है, अभी बहुत प्रयास किए तब लगा है।
1: ये फाइनली लग गया?
0: हाँ फाइनली तो लग ही गया। और सब ठीक है? और सब ठीक ठाक ना?
1: जी जी सब बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: ना फिल्म का
1: जाए
0: तो देर ना हो जाए, आ जा रही हूँ, मैं आके तेरा रास्ता देख लिया।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ ऋषि कपूर, सुरेश सुरेश राठौर का उसमें आवाज भी है, ये गाना सुना दीजिएगा। हमारे स्वास्थ्य कर्मी से लगे हैं ग्रामीण से उनको, और हमारे इंजीनियर से सचिन बाबा और इनके प्रसाद।
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97,714,86,164।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: तो छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: जी नमस्ते बहादुर
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में
0: जी।
1: कैसे हैं बहादुर जी?
0: ठीक है, मतलब
1: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो कुछ ही भी नहीं हो रहा है, गर्मी चल रहे हैं।
1: तो नाश्ता हुआ?
0: जी जी, खाना है, नाश्ता हो गया।
1: चलिए बढ़िया है। तो अच्छा बताइए, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं आपके?
0: सब कुछ ठीक है।
1: चलिए बढ़िया का बात है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: नहीं, साधन दुल्हन सजाएंगे
1: जी। और सुनाना भी है
0: जी? जी आनंद सुनाए।
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: जी जी
1: जी। गाना डेडिकेट भी करिएगा
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: जी।
1: कहाँ से बात कर रही हैं कुकु?
0: पहचानपुर जी।
1: एक बार और बताइए कहाँ से बात कर रही हैं?
0: पहचानपुर जी।
1: क्या करती हैं खुशी जी आप?
0: पढ़ाई करती हूँ।
1: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
0: नाइन्थ क्लास के।
1: नाइन्थ क्लास की पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
0: अच्छी चल रही है, अभी छुट्टी कर रही है। और छुट्टी चल रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो छुट्टी में कहीं घूमने गई कि नहीं?
0: नहीं नहीं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: बाग में कोयलिया भोरे भोरे, वही कवाली सुनना है।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ, मेरी मम्मी को और चाची को, मेरी बहन को और मेरी अंक को।
1: चलिए तो प्ले करें गाना।
0: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल किए।
2: बगिया में कोयलिया भोरे भोरे,
3: क्या बात है।

0: अरे यही काहे के बुत, यही काहे के बुत गिरे मोह के बल, देखो आए गए प्यारे नबी नबी, प्यारे नबी नबी, देखो आए गए प्यारे नबी।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5।

0: देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: तो छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
1: किस्मत बोलते
0: जी, क्या हाल चाल दादा जी?
1: हाँ बाबू,
0: सब बढ़िया। हाँ कहा नहीं, कैसा बानी?
1: ठीक बानी बाबू,
0: ठीक बानी।
1: ठीक बना ना घर सब? ठीक बना।
0: हाँ जी, सब कोई बढ़िया बटे, घर भी हम बढ़िया बानी।
1: ठीक बोलिए, चाहे
0: ठीक बनो।
1: हाँ सब ठीक बना, जुम्मा आओ ना आओ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक बा।
1: वाली सुनाई बढ़िया अपना मन से।
0: अच्छा चलिए ठीक बा, फिर
1: ठीक बा।
0: ठीक बा, तो प्ले करता नहीं रहा को वाली?
1: ठीक बा,
0: ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
9: पिक इट अप, पिक इट अप,
10: हेलो,
9: नाउ पिक योर फोन अप, pick it up, pick it up,
10: hello,
9: now pick your phone up,
10: hello,
11: jab phone ring karte hai to kehte hain hello,
12: to दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो क्रिमजिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: पठानपट्टी।
0: पठानपट्टी से कौन बात कर रही हैं आप?
1: रोशनी।
0: क्या हाल चाल है रोशनी जी?
1: ठीक है, आपने बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: नाश्ता हो गया?
0: हाँ जी नाश्ता हो गया, आपका हो गया है? बताइए तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको? वालेकुम सलाम।
2: क्या हाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया रहो, बताइए कैसा बने?
2: ठीक बने सर, आज तो गाना सुनवा दे, बहुत अच्छा लगा सुन के।
0: चलिए अच्छा बात है, क्या अच्छा लगा?
2: भाती में
0: सोनी बात करता नहीं।
2: सोनी में और सब मैम?
0: सब बढ़िया बा।
2: सब बढ़िया बा, वे तो ठीक बानो?
0: हाँ जी बढ़िया बा। राहुल बताए, राहुल बढ़िया बानो?
2: हमने को बढ़िया बन सर, आज गाना भोजपुरी सुना दी तोरा ला पगली जी ले दुनिया के मेला में।
0: और गाना सुनवाऊ के बा कोई के?
2: जी मैम।
0: शादी नाम लेवे के चाहे?
2: हाँ मदयादिन वालो सब नाम रानी और देवर वालो अजीज तफीक नीलो सुन लिया।
0: गाना प्ले करता नहीं?
2: मैम
0: ठीक बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करी।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: मैं बोल रहा हूँ जिला गुना से, गोपाल ओझा।
1: जी कैसे हैं गोपाल जी?
0: बढ़िया है मैडम जी, आप कौन बोल रही हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं।
0: जी जी मैडम जी,
1: जी
0: दो हफ्ते में लगाया मैंने आपसे, दो हफ्ते में बात हो रही है मेरी तो।
1: चलिए बात हुई।
0: बिहार का मौसम कैसा है आपके उधर का?
1: इधर तो काफी धूप है, गर्मी है।
0: जहाँ भी धूप है थोड़ा, कल बारिश हुई थी थोड़ा सा कहीं हल्की सी कहीं।
1: इधर तो क्या बोले, बादल भी नहीं आ रहा, बारिश तो दूर का बात है।
0: धूप भी पड़ रही है इधर तो, बारिश भी हुई थी कल तो। क्या गाना सुनना है?
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
0: गाना सुनना है उदित नारायण अलका याग्निक फिल्म का, सुनवा दीजिए राजा हिंदुस्तानी का।
1: राजा हिंदुस्तानी का कोई भी,
0: राजा हिंदुस्तानी का ना, वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं।
1: याद है तो लाइन गा दीजिए।
0: गा दें?
1: जी बिल्कुल।
0: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। इतना ही आता है मैडम।
1: कोई नहीं, तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट है ना, सुनील साहू मकसूद से, ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धागड़ जी है, रामधन धागड़ जी है।
1: तो प्ले करेगा ना?
0: प्ले कर दीजिए मैडम
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी करे देखता रहूं।
3: क्या

0: जोकर।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन भी हिंदी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो दोस्तों, हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल पे एक छोटा सा ठहराव, लेकिन यह अलविदा नहीं बल्कि अगली मुलाकात तक का एक प्यारा सा विराम है। आज के हेलो माय चॉइस में हमने आपकी फरमाइशों के बहाने सुने कई सुरीले गीत, साझा किए कुछ प्यारी यादें और बिताए कुछ खूबसूरत पल। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन वादा है कि फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी और फिर सजेगी आपकी पसंद की गीतों की महफिल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पल को संगीत की तरह महसूस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी की हर धड़कन में एक धुन छुपी होती है, बस उसे सुनने और गुनगुनाने की देर होती है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे सोनी। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे आपकी पसंद और फिर सजाएंगे संगीतों से भरी एक नई महफिल। तब तक सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, अपने जिले की आवाज़। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।

0: सुंदर एमए तक पढ़ी हुई, उम्र 22 वर्ष, ये भी मेरे काम की नहीं, उम्र 25 वर्ष नहीं चलेगी। आज भी लगता है मेरे काम की कोई कन्या नहीं मिलेगी। 23 वर्ष, 25 वर्ष, ओफो, आगे पढ़ूं, सुशील 18 वर्ष, हाँ, ये कुछ चम रही है, क्या है, फिर से पढ़ूं, सुशील अति सुंदर, उम्र 18 वर्ष, 18 वर्ष, कद 152 सेंटीमीटर, PSC तक पढ़ी कन्या के लिए हैंडसम, 500-600 रुपए तनख्वाह पाने वाला, 22 से 28 वर्ष की उम्र वाले लंबे कंद के वर की जरूरत है। कृपया स्वयं आकर मिले तथा 1-2 दिन घर में मेहमान बनकर रहे।
1: कमाल है
2: भाई, कमाल हो गया।
0: नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: अरे यार, अब मुझसे क्या छुपा रहा है, मैं भी तो देखो जरा। ओ अखबार, क्यों भाई, आज भी लड़की पसंद आई या नहीं?
2: अरे मैं तो कहता हूँ यार कि 18-20 वर्ष की लड़की का चक्कर छोड़ दे।
1: एक बात बता भैया, भला ऐसी लड़की वाले अखबार में विज्ञापन क्यों देंगे?
2: अरे उन्हें तो घर बैठे बिठाए रिश्ते मिल जाएंगे।
0: अरे नहीं यार, आज मेरे मतलब की कन्या मिल गई।
1: क्या सच?
0: हाँ, जैसी मैं चाहता हूँ ना, बिल्कुल वैसी।
1: अरे जरा अखबार तो दे, मैं भी तो देखूं जरा।
0: ये देखिए, ये देख, लंबा कद,
1: वाह,
0: अति सुंदर,
1: बिल्कुल ठीक,
0: पढ़ी लिखी, उम्र 18 वर्ष।
1: अरे वाह, भाई मुबारक हो। तेरे मतलब की लड़की बिल्कुल वैसी ही मिली है जैसी तू चाहता था। भाई कांग्रेचुलेशंस। मगर ये नीचे क्या लिखा है? कृपया खुद आकर मिले तथा 1-2 दिन घर में मेहमान बनकर रहे। ये क्या माजरा है यार?
0: यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई यार। खुद मिलना तो ठीक है, लेकिन मेहमान बनकर रहना, ये कौन सा नया तरीका है?
1: वैसे देख, मेरी नजर में ये सबसे अच्छा तरीका है।
0: वो कैसे?
1: देख, शादी से पहले लड़के और लड़की वालों की बातचीत होती है, होती है ना? और उसके बाद लड़का लड़की को देखने दिखाने का चक्कर चलता है, उसके बाद छानबीन होती है, अरे उसके बाद जाके कहीं शादी तय हो पाती है। और यहाँ सारे काम एक साथ हो रहे हैं, अरे 2 ही दिन में हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा।
0: हाँ यार, कहे तो तू ठीक रहा है, यही बात होगी।
1: अरे तो फिर देर किस बात की है, आज ही पहुंच जाओ लड़की वालों के यहाँ।
0: लेकिन यार मुझे मुझे शर्म आती है, मतलब अनजानों के बीच 2 दिन, तू ही सोच।
1: अरे यार तू भी क्या बात करता है, तू 2 दिन की बात कर रहा है। अरे अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना, तो मैं ऐसी जगह 10 दिन तक काटने के लिए तैयार हूँ।
0: ठीक है, अगर मैं चला भी जाऊं और लड़की पसंद ना आए तो ठुक गए ना मेरे तो ग्रुप है।
1: तेरे की यार, तू रहा बुद्धू का बुद्धू। अरे भैया, जो 2 दिन तक फोकट की खाएगा, अरे उसका भी कोई हिसाब लगाया कि नहीं?
0: हाँ।
1: अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर लड़की वालों को यही तरीका अपनाना चाहिए। और अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो मैं एक भी लड़की पसंद नहीं करता और ये सिलसिला चलाए रखता। अरे आज शाम कोई पहुंच जा, देर करेगा तो कोई और लड़का हाथ मार लेगा। हाँ
0: तो ठीक है, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, परसों तक लाता हूँ।
1: हाँ जल्दी चला जा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक यू।
1: अच्छा मैं चलता हूँ।
0: हाँ
3: शर्मा जी, शर्मा जी।
4: अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ, शोर मत मचा।
0: जी शर्मा जी का घर यही है।
4: शर्मा जी? कौन शर्मा
0: जी? वो विनोद शर्मा।
4: हाँ यही है, यही है। मगर आप कौन हैं?
0: जी जी जी, मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था।
4: अच्छा।
0: क्या आप ही ने दिया था?
4: हमने ही दिया था। आइए आइए, वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए।
0: जी जी थैंक यू।
4: बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए।
0: जी, जी आप कुछ सुस्त सी दिखाई दे रही हैं, खैरियत तो है?
4: बस यूं ही, आज सुबह से कुछ बुखार चढ़ गया है, पूरा बदन जैसे टूटा जा रहा है।
0: आप आराम कीजिए,
1: चलिए फिर, ये नहीं।
4: अरे आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा?
1: आपके वो शर्मा जी
4: वो तो दफ्तर गए हैं।
1: क्या घर में और कोई नहीं है?
4: बस एक लड़की है मेरी, वो भी बाहर गई है।
1: हा? आप बीमार हैं और घर में कोई नहीं?
4: मजबूरी है, मेरी एक सहेली है, उसकी लड़की की शादी है।
1: जी
4: शोभा वहीं गई है, शोभा मेरी बेटी है। अब आप ही बताइए, सहेली की लड़की की शादी है, मैं नहीं जा सकी तो बेटी को तो भेजना ही था। आप चिंता न कीजिए, वो कल सुबह तक जरूर आ जाएगी।
1: जी फिर मैं किसी और दिन आ जाऊंगा।
4: अरे ले, ले, ले, ये आप क्या कह रहे हैं, इतनी दूर से आप आए हैं और लड़की देखे बिना ही चले जाएंगे?
1: जी आपको मेरे यहाँ रहने से कष्ट होगा।
4: हाय कैसा कष्ट, अरे अपनों का भी कोई कष्ट होता है क्या? देखो बातों ही बातों में मैं चाय के लिए भी भूल गई। आप बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ।
1: ये आप क्या कर रही हैं? उठिए मत, आपको बुखार है, चाय कोई जरूरी तो नहीं?
4: अरे आपके बहाने मैं भी पी लूंगी, सुबह से कोई बनाने वाला नहीं था, मैंने भी नहीं पी है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ।
1: नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ही आपको बना के पिला देता हूँ।
4: अरे आप भी क्या सोच रहे होंगे, पर
1: नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अभी बना कर लाया। लीजिए चाय पीजिए।
4: बड़ी जल्दी बना कर लाया
1: जी।
4: अरे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। देखा इतनी बातें कर ली आपसे, लेकिन आपका नाम तक नहीं पूछा।
1: जी मुझे महेश कहते हैं।
4: महेश
1: जी
4: कहाँ तक पढ़े हो?
1: जी एमए किया है और फैक्ट्री में मैनेजर हूँ।
4: अरे वाह, बस मजा आ गया, हमें तो आप जैसा ही लड़का चाहिए था। आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, शोभा आ जाए उसे देख लीजिए, फिर जल्दी ही शादी तय कर देंगे। आप थके हुए आए हैं, आराम कर लो, मैं रोटी का प्रबंध करती हूँ, पका तो नहीं सकती फिर भी कोशिश करती हूँ। या ठहरो, किसी से कहकर बाजार से मंगवा लूंगी।
1: आप पकाइए भी नहीं, आपको पूरा आराम चाहिए, मैं होटल में जाके खा लूंगा।
4: आप क्यों होटल में जाएंगे जी? अरे मैं क्या नहीं मंगवा सकती, और फिर मुझे भी तो अपने लिए मंगवाना है।
1: लाइए मुझे बर्तन दे दीजिए, मैं ही होटल से ला देता हूँ। अच्छा? आप किसी और को क्यों तकलीफ देती है?
4: अच्छा अच्छा तो सुनो, किचन से बड़ा टिफिन ले जाओ, और सुनो ये पैसे भी दिए देती हूँ।
1: नहीं पैसे आप रहने दीजिए, क्या आपने मुझे घर का नहीं समझा?
4: क्यों नहीं समझा, अब तो आप पक्के हमारे घर के सदस्य हैं।
1: तो बताइए क्या क्या लाऊं खाने के लिए?
4: अरे ऐसा कीजिए, आप मटर पनीर ले आइए, और हाँ वो कोफ्ते और दही बड़े लाना ना भूलना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
1: जी ठीक है ले आऊंगा, और कुछ लाना है?
4: सुनो जब आप ला ही रहे हो तो शाम का खाना भी लेते आना, शाम को भी मैं कहाँ पका पाऊँ।
1: जी हाँ ठीक है, शाम का खाना भी ले आऊंगा।
4: सुनो महेश, वो एग करी जरूर लाना, शर्मा जी को बहुत पसंद है, समझे? मैं भी थोड़ी खा लूंगी, कहते हैं बुखार में ये दवाई का काम करती है, क्यों है ना?
1: है तो सही, लेकिन आपको तो अभी फल खाने चाहिए।
4: फल? ठीक है, और वो भी खा लूंगी। सुन, पापर अंगूर, आधा किलो सेब और एक पपीता लेते आना।
1: अच्छा मैं चलता हूँ।
4: जल्दी आना जरा।
5: वाह वाह, दो दिन से खाने का बड़ा मजा आ रहा है। आदमी फंसाने और उसकी जेब खाली करवाने का ट्रैक बहुत है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, हमारे होने वाले दामाद जी को तुमने आज कहाँ भेजा है? अरे दो दिन आए हो गए हैं, थोड़ी देर तो चैन से आराम करने दो उसे।
4: आज मैंने उसे चावल चीनी चाय पत्ती वगैरह वगैरह लाने को भेजा है। काफी देर हो गई, शायद आता ही होगा।
5: काफी मोटा हाथ मार रही हो तुम।
2: अरे हाँ एक बात तो बताओ, आज हम क्या बहाना बनाएंगे?
5: कहो तो शोभा को आज दिखा दें।
4: हाँ हाँ दिखा दीजिए, जरूर दिखा दीजिए, बड़ी खूर की परी है ना। आहिस्ता आहिस्ता चुप हो जाओ, मेहमान आ रहा है।
2: अरे ये तो बुरी तरह से बोझे से लदा हुआ है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ।
5: लाओ लाओ लाओ, मुझे दे दो ये झूला, काफी भारी है।
6: जी धन्यवाद।
4: आज तो आप बैंक से पैसे निकलवा कर लाए होंगे ना?
2: वो कमला, आज मैं पैसे नहीं निकलवा सका।
4: क्या पैसे नहीं निकलवाए? हाँ। मगर क्यों?
2: वहाँ जाकर पता लगा, वहाँ जाकर पता लगा कि उस बैंक में एक बाबू का देहांत हो गया है और पूरे बैंक की छुट्टी कर दी गई है।
4: क्या आज भी पैसे नहीं मिले? मंगेश जी क्यों सोचते होंगे? सुनो जी, आप जा रहे हैं या मैं किसी से मांगने जाऊं?
6: जी जी जी, आप कहाँ जाएंगी? मैंने कहा ना कल दे देंगे पैसे। पैसे कौन से भागे जा रहे हैं?
4: कल क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपको कहीं से नहीं मिले तो मुझे कहीं से मिल जाएंगे।
2: हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो।
6: रुकिए रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। चले गए। अरे माजरा क्या है, तेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वो दिन मुझे यहाँ आए हो गए, लड़की दिखाने में टालम टोल कर रहे हैं, पैसे देते वक्त कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी बैंक बाबू का ध्यान, ये सब क्या है? मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ पसा? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा धोखा नहीं हो सकता। ये सब कैसा तमाशा है? अभी तक मेरे 200 रुपए से ऊपर खर्च हो चुके हैं, दो दिन और आ तो घर लौटने का किराया तक नहीं होगा। ठीक है आज का दिन और देख लेता हूँ, कल फिर कुछ सोचना पड़ेगा।
3: विनोद, ओ विनोद,
6: ये इस तरह शर्मा जी को कौन आवाज दे रहा है? देखूं जाकर।
7: आप, मैं समझा विनोद को सिनेमा का टिकट नहीं मिला होगा इसलिए घर लौट आए हैं। माफ करना मैंने आपको परेशान किया।
6: सिनेमा का टिकट क्या मतलब? वो दोनों किसी से पैसे लेने गए हैं या सिनेमा देखने? ताल में कुछ काला है।
7: भाई साहब जरा सुनिए। कहिए आपने मुझे बुलाया?
6: क्या आप विनोद शर्मा को अच्छी तरह जानते हैं?
7: मैं पिछले दो दिन से आपको भी अच्छी तरह जानता हूँ।
6: जी क्या मतलब?
7: मतलब साफ है, आप अपनी शादी के लिए शर्मा जी की लड़की को देखने आए हैं ना?
6: लेकिन आपको कैसे मालूम?
7: और आपने दो दिन में 200-400 रुपए भी लुटा दिए होंगे। और आपको लड़की अभी तक नहीं दिखाई गई होगी।
6: लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं?
7: आप वाकई चक्कर में फंस गए हैं बरखुरदार, और जितनी जल्दी हो यहाँ से खिसक जाइए। यहाँ शादी लायक एक लड़की जरूर है लेकिन देखने में यह लोग हर महीने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं और दो एक तुम्हारी घर लड़के फंस जाते हैं जिनसे उल्टे सीधे बहाने बनाकर महीने भर का राशन डाल लेते हैं। और जिस दिन लड़के को घर से भगाना हो उस दिन अपनी लड़की को दिखा देते हैं और लड़का ऐसे भागता है।
6: सुनिए सुनिए भाई साहब,
5: हे भगवान मैं भी कहाँ फंस गया, शादी के कैसे कैसे सपने देखे थे सब धूल में मिल गए, ऊपर से 200 रुपए भी, उनके लौटने से पहले ही खिसकना ठीक है, बाहर भेजा है 200 रुपए और बाहर भेजा है शादी, मैं तो चला।
8: चक्कर शादी का।
9: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
11: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
11: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
11: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा, मिला ही नहीं
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
16: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
15: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
16: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
17: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
18: रेडियो रिमझिम,
17: सुनो दिल से।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के

0: कटिंग बाजार से कम रेट ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी, श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में

0: मोदी ने 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। बिहार के 73,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया गया। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को परखा गया। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।
1: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहाँ पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में मृतक युवक के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के पीटी में 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना में आयोजित की जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे।
2: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सभी उत्साहित थे। बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 3 मंत्रियों को अधिकृत किया है। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नीतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं। श्री चौधरी ने गृह विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए विजय कुमार चौधरी को, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल विमानन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। वहीं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हुगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं बंगाल में योग दिवस का हिस्सा बनेंगे।
3: कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहाँ से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।
0: इधर प्रदेश भर में कई स्थानों पर योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योग संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत संसार पोखर के पास खुदाई में मिले काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष मृणाल रंजन को आज प्रतिमा सौंप दी गई। 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल काल से जुड़ी मानी जाती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 157 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने एफसीआई थाना क्षेत्र से छिनतई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पुत्र लाल बाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। सीवान के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार श्रीवास्तव ब्लड डोनर क्लब के संरक्षक बने हैं। श्री श्रीवास्तव को दधीची देहदान समिति की जिला इकाई का भी संरक्षक मनोनीत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसान समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: तो रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
12: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
14: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
16: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
4: और 9097-6160-02।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास दसवीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
11: भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए एनसीबी काडर उप प्रबंधक कुल पद 14, एनसीबी काडर पदधारी प्रबंधक कुल पद 8, एनसीबी काडर समूह प्रबंधक कुल पद 1, काडर कार्यालय सहायक कुल पद 1, एनसीबी काडर पदधारी हिंदी सहायक 1 पद और एनसीबी काडर पदधारी प्रशासन सहायक 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thstii.res.in।

0: भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर एक सलाहकार आईटी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, एसटीए जल प्रबंधन, एसटीए वानिकी, एसटीए जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, एसटीए कृषि एवं बागवानी तथा एसटीए पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण 8वीं मंजिल प्लांट अथॉरिटी भवन देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पूसा नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रिक्वेंसी 90.4
12: रेडियो एमजेम।
11: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाये।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
14: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
15: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
14: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
14: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
15: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
15: कॉल करें 70-70-75-63 या 70-70-75-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
20: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
21: क्यों, क्या हुआ है?
20: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
21: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
20: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
21: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
22: ठक ठक।
20: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
21: अच्छा मिला ही नहीं।
20: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
21: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
20: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
21: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: Oh,
0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। नीट परीक्षा की तैयारियों पर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। वाहन चोर गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यायालय परिसर में होगा योगा कार्यक्रम। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की हो गई मौत और हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। 21 जून को आयोजित होने वाले नीट परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एक एक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे, साथ ही पुलिस के भी अधिकारी और केंद्राधीक्षक भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि 21/6/2026 को यानी रविवार को अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5:15 बजे तक 7 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में ही परीक्षा का संचालन होगा। परीक्षा में कुल 3,906 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। विकलांग परीक्षार्थियों के लिए 1 घंटा का अतिरिक्त समय निर्धारित किया गया है, इसलिए विकलांग परीक्षार्थी 6:15 बजे तक परीक्षा दे सकेंगे। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो, पोस्ट कार्ड साइज का 1 फोटो एवं पारदर्शी वाटर बॉटल के साथ परीक्षार्थी प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षार्थी को केवल कलम ही केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी को सुबह 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। जिलाधिकारी ने आज तकनीकी विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। इसको लेकर उन्होंने बैठक किया और परियोजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसमें कार्यपालक अभियंताओं और संबंधित पदाधिकारियों से विभाग वार योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में कार्य की गति धीमी है उनमें तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराएं। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस दौरान 2 आरोपियों की जहां गिरफ्तारी हुई है तो वहीं 11 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि फर्जी कागजात बनाकर चोरी के वाहन को बेचा जाता था। इस दौरान मोहम्मदपुर क्षेत्र के कुशहर गांव में पुलिस ने छापेमारी की और यहां के चंदेश्वर शाह और बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर निवासी बुलेट उर्फ साहेब को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर सदर SDPO टू से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
2: सर आपके नेतृत्व में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के सरगना पकड़े गए, इस पर क्या कहेंगे?
3: मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष को कल सूचना मिली कि ग्राम कुशहर में एक व्यक्ति के घर में चोरी का मोटरसाइकिल रखा गया है। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक टीम गठित करके वहां पर छापामारी किया गया तो चंदेश्वर शाह नाम के व्यक्ति के घर में 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिसको हम लोग सत्यापन किया तो वो चोरी का मोटरसाइकिल प्रतीत हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके निशानदेही पे एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, साथ में उसके भी घर पे एक मोटरसाइकिल बरामदगी हुई जो कि फैजलापुर बैकंठपुर का बुलेट शाह बुलेट राम करके उर्फ साहब राम करके व्यक्ति अपना नाम बताया, एवं इसमें संलिप्त एक नेटवर्क के बारे में भी इनसे खुलासा हुआ, जिसके विरुद्ध में पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और इन्हीं के निशानदेही पे कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, साथ ही 2 मोबाइल भी पकड़ाया है और इन सब बिंदुओं पे गहन अनुसंधान की जा रही है। हाँ, इस नेटवर्क का मेन काम था कि चोरी की गई मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर को वो पंच कर देता था एवं उसके कागजात को भी ये मैनिपुलेट करके जनता को बेचता था।
0: आज अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक घटना बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां 14 जून को सड़क हादसे में घायल नगर थाना क्षेत्र के 33 वर्षीय अंग्रेज महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, आगे की कार्रवाई कर रही है। दूसरी घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव के पास की बताई जा रही है, यहां इसी गांव के 52 वर्षीय उमेश राम की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया और युवती की मौके पर मौत हो गई। वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और इनके शव को भी कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया कर रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में मातम पसर गया है। 21 तारीख यानी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर योगा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम सुबह न्यायालय के व्यवहार न्यायालय के नए भवन के ग्राउंड फ्लोर में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण की उपस्थिति में प्रशिक्षित योग शिक्षक की देख रेख में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जनता से भी योग करने का अपील किया गया कि सभी लोग अपने जीवन में योगा को शामिल करें और स्वस्थ जीवन जिए। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ही कृतपुरा बाजार के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ठोकर मार दी। इनकी भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वहां से स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर में इलाज के दौरान इनकी भी मौत हो गई। मृतक बैकुंठपुर के मड़वा गाँव के 40 वर्षीय ज्ञानचंद साह बताए जा रहे हैं। थाने के डीएवी पब्लिक स्कूल में एक वाहन चालक अरुण कुमार सुबह स्कूल परिसर में ही हार्ट अटैक से मौत होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है स्कूल में गाड़ी चला रहे थे। ये मूल रूप से बिहार के जहानाबाद के निवासी थे और स्कूल के मैदान में अचानक बेहोश होकर गिर गए। आनंद फानन में इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अरुण ठाकुर के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी अजय यादव है जो गंगा सागर यादव का पुत्र है और दूसरा फुलेट यादव है यह ब्रिज कुमार यादव का पुत्र है। ये दोनों बिलरुआ थाना भोरे जिला गोपालगंज के निवासी है। इन्हें गिरफ्तार कर आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाने पुलिस ने 90 बोतल देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी थाने थाना क्षेत्र के चनावे गांव का उपेंद्र सिंह है। इसके शराब को जब्त करने के बाद आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड के बसगढ़ा गांव में धान की सीधी बुआई विषय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 76 किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की सीधी बुआई तकनीक एवं इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और खेत समतलीकरण, अल्पावधि धान किस्मों के चयन तथा शून्य जुताई मशीन के उपयोग पर महत्व डालते हुए किसानों को आवश्यक जानकारियां दी गई। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने 23 लीटर से अधिक देसी विदेशी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें अनमोल सिंह पिता महातम सिंह यह पहाड़पुर थाना कुचायकोट का निवासी है, दूसरा विशाल कुमार पिता मदन प्रसाद यह बलथरी थाना कुचायकोट का रहने वाला है और तीसरा राजू कुमार पिता बुद्धू यादव यह अही टोला थाना पहाड़पुर जिला मोतिहारी का निवासी बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नीट परीक्षा की तैयारियों पर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। वाहन चोर गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यायालय परिसर में होगा योगा कार्यक्रम। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की हो गई मौत और हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिसके साथ ही हालचाल का यहाँ पर समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
24: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
26: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
27: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखुल रोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
28: रियाज रेट्रो।
29: इस साल आशा जी अपने बर्थडे पर रेडियो पर अपनी पोती जनई के साथ सुनाई दी। बहुत ही क्यूट बातचीत गपशप थी। एक पोर्शन मैंने सुना जहां पर वो बता रही थी कैसे उन्होंने एक बहुत छोटी लड़की की रुआसी सी आवाज निकाली थी, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम गाने के लिए, क्योंकि as she said बड़ी ही छोटी सी बच्ची थी ना। एक्चुअली हम सोचते नहीं हैं ऐसी चीजों के बारे में। वी टेक देयर टैलेंट, देयर जाइगेंटिक टैलेंट सो मच फॉर ग्रांटेड। बात mid-80s की है और आशा जी गा रही हैं इस गाने में नीलम के लिए, जो मुश्किल से उस वक्त 15 साल की थी शायद, और आशा जी खुद तब 50 के ऊपर। क्या मेहनत, लगन, एफर्ट, शिद्दत और हुनर से काम करती गई हैं वो, कि नीलम के लिए उनका प्लेबैक इतना नेचुरल, इतना एफर्टलेस लगा। अब मैं वो वीडियो देख रही थी और सोच रही थी वाह हाउ डिड शी डू इट। और शुरुआत करते हैं उसी गाने के साथ, क्योंकि इस किस्से और इस गीत से मेरे जहन में रूठने के बारे में भी बड़े सवाल उठ रहे हैं।

आशा जी के साथ अमित कुमार, आरडी बर्मन, गुलशन बावरा, वन ऑफ दोज फॉरगेटेबल 80s फिल्म्स जवानी। ले लेगी जा मेरी तेरी नाराजगी, जिसमें तो खुश रहे उसमें मेरी खुशी। सेकंड लाइन काफी सिंपल है समझने के लिए, पर सारा झोल पहली लाइन में है। कैसे समझाती हूँ। और आजकल मैं ये रूठने मनाने वाली बात पर काफी सोच रही हूँ। ये ले लेगी जा मेरी तेरी नाराजगी, क्यों कहा मैंने कि सारा पंगा इसी में है? क्योंकि सोच कर देखिए, दो लोगों में जब अनबन हो जाती है तो 10 में से 8 बार दोनों ही नाराज होते हैं, दोनों हर्ट होते हैं, दोनों तकलीफ में एक ही टाइम पे एक साथ होते हैं। इट्स नॉट सो क्लीन लाइक इट्स इन द मूवीज कि एक गुस्सा है और दूसरे के लिए ये बात साफ है कि गलती मेरी है, मुझे अब मनाना पड़ेगा। जिंदगी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मामला पेचीदा। कितनी छोटी सी ही बात क्यों ना हो कि चलो डे के लिए लेट हो गए, क्लासिक सिचुएशन जिसमें हीरोइन रूठ जाती है और हीरो गाने गाता है फिल्मों में। लाइफ में इतनी छोटी सी बात पर भी बहस हो जाती है। लड़की कहेगी मैं वेट कर रही थी इतनी देर, पिक्चर मिस हो गई, तुम हमेशा लेट आते हो, वो लड़के मुझे घूर रहे हैं तब से। पर लड़का गाना नहीं गाएगा, कहेगा तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, इतनी मुश्किल से बदला, ये बारिश में ट्रैफिक कितना है देखा है, ये बॉस जल्लाद है, छोड़ नहीं रहा था और अब तुम भी ताने।

0: रूठने मनाने का क्यूटनेस कम और ये सेल्फ पिटी ज्यादा होती है जब लड़ाई हो जाती है. Isn't that true? दोनों बैठे रहते हैं कि मैं हर्ट हूं, तुम अब आके मरहम करो. गानों में आरडी ऑल द वे, सनी से जाने क्या बात है लिखा आनंद बख्शी ने, गाया लता जी ने, और फिर एसपीबी सर फिल्म सागर से बोल जावेद अख्तर, ऑफ कोर्स सच मेरे यार है. और सच तो है कि बात काफी टेढ़ी है एक बार जब अनबन हो जाए तो.
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती.
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज.
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को.
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं. तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है.
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
5: प्रसाद क्लिनिक.
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी. रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज.
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार.
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार.
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स. BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर. और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे.
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान.
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी.
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403.
0: और ये बात जो मैं कह रही हूँ ना, कि कौन किसको मनाए, किसको पहले एहसास हो कि अगला तकलीफ में है, इस सिचुएशन को क्यूट से टॉक्सिक होने में देर नहीं लगती. एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या नाराजगी इस इंतजार और सन्नाटे में एक घाव की तरह इन्फेक्टेड हो सकती है, एंड बिफोर यू नो इट रिश्ता ही एम्प्यूटेट हो जाए. कई साल बाद सोचने बैठो तो खुद हैरानी हो कि What the hell happened? शुरुआत तो इतनी मामूली सी थी, एक कॉल, एक मैसेज से ठीक होने वाली चीज, तो बढ़ते बढ़ते जलजला कैसे बन गया कि सब ढह जाए. नामुमकिन सा लगता है पर होता है, सिंपली बिकॉज हमें नहीं समझ में आती उस अनबन, उस लड़ाई, उस गलत फहमी के बाद कि हम खुद रूठे हैं या हमें अब मनाना है अगले को. और बात करने की तो रखी ही नहीं है ना, हम क्यों शुरुआत करें, अगला करें, पहल वो करें.

शशि कपूर सुपर हीरो सॉन्ग, जिसमें वो स्केटिंग भी कर रहे हैं, अकॉर्डियन भी बजा रहे हैं, जो लड़की है ही नहीं उसके काल्पनिक रूप के साथ डांस भी कर रहे हैं, वो भी व्हाइट पैंट शर्ट और फॉर्मल शूज पहनकर, गा भी रहे हैं किशोरदा की आवाज में साहिर साहब के बोल यूं ही ऑन द स्पॉट बनाकर आरडी की धुन में। मतलब आई लव आवर हिंदी फिल्म हीरोज, आई जस्ट लव देम। आ गले लग जा के गीत से पहले एक गजल विद अ ट्विस्ट सुनी आपने। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बहादुर शाह जफर का बेहतरीन कलाम। आज के दौर में मेड फेमस बाय मेहदी हसन साहब अमंग मेनी अदर्स, पर मैंने आपको रूना लैला वाला वर्जन सुनाया। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। ले गया लूट के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। ये बेकरारी बहुत होती है जब बातचीत बंद हो जाए, रूठने मनाने के सिलसिले में यही सराहट न मिल पाए कि नाराजगी किसे है और मेहनत किसको करनी है। जब दोनों को ही अपनी चोट का एहसास हो सिर्फ, तो फिर मरहम करने कौन आगे आएगा। बहुत तकलीफ देह होते हैं ये दिन, दो खामोश इंसान बार बार अपने फोन की तरफ देखें, 10 बार सोशल मीडिया चेक करें, कई बार व्हाट्सएप पर जाएं और अगले को ऑनलाइन देखकर जल्दी से ऑफलाइन हो जाए, है ना। एक लंबा सा इंतजार और खुद को भी हैरानी हो कि अरे, जिस इंसान को रात के 2 बजे भी मैसेज करने में झिझक नहीं होती थी, जिससे कभी भी हंस बोल लेते थे, कॉल कर देते थे, आज उसी इंसान और मेरे बीच में हर्ट, एंगर और सेल्फ कॉन्शियसनेस ने इतनी बड़ी दीवार कैसे खड़ी कर दी यार। और मेरा तो इसको बनाने का इरादा भी नहीं था, मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश थी कि रूठे को कोई आए और मनाए। मेरी आपके साथ, और कम से कम मैंने तो यही देखा है होते हुए कि ज्यादातर मनमुटाव के बाद दोनों जन ही एक साथ एक ही टाइम पर एक दूसरे से रूठ जाते हैं और दोनों इंतजार में फिर बैठे रहते हैं अगले का ये कहने के लिए, और इसी उलझन में यही बात कोई नहीं कहता।

0: चलो जी, कौन रूठा है, किसने मनाना है, खफा कौन है और गाना किसको गाना है, ये बात तो असल जिंदगी में कभी साफ नहीं होती। पर हमने तो दो क्लासिक रूठने मनाने वाले गाने सुन लिए ना, लता जी की आवाज में अजी रूठ कर फिल्म आरजू, हसरत जयपुरी शंकर जयकिशन, और उससे पहले ऑफ कोर्स लता जी के साथ रफी साहब देखो रूठा ना करो तेरे घर के सामने, इसको भी लिखा हसरत जयपुरी ने, धुन SD वर्मा।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यार, ये फिल्मी गानों के साथ दिक्कत ही यही है। अब देखो रूठा ना करो गीत सुनकर तो रूठने का मन कर जाता है ना, कि वाह हम रूठे तो कोई ऐसे मनाने आए। बट रियल लाइफ में कौन खड़ूस मनाने आ रहा है, वो भी इतने शायराना अंदाज में। बैठे रहो अब अपनी नाराजगी को लेकर, इनफैक्ट खुद ही गा लो, किसी बात पर मैं किसी से खफा हो गया। 4-6-8 दिन बाद जब वो हर्ट या एंगर की धुंध छटने लगे, तब आगे इतनी बड़ी खाई तन्हाई की दिखने लगती है। तब हम सर पीट लेते हैं कि ओ शाइट, ये का कर दी बा, हुन की करा पापा जी। पर अब तो ईगो ने मोर्चा संभाल लिया है, अब बात करने का मन भी हो तो पहल तो नहीं कर सकते, और उस तरफ जो बैठे हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं। साउंड्स क्यूट एंड फनी, बट लाइक आई सेड, कैन बिकम पॉइजनस वेरी सडनली। और रिश्ते की नींव अगर मजबूत ना हो तो यही वो लम्हा है जब सब कुछ ढह जाता है। हुआ है ना आपके साथ भी, और आज तक आप समझ नहीं पाए कि यार हुआ क्या? जो प्यार का पौधा इतना फल फूल रहा था, उसकी हरियाली कब भूरी पड़ गई, उसकी टहनियां अचानक ऐसे कैसे सूख गई, उसकी जड़ें पूरी तरह से सड़गल कैसे गई? हम तो धूप, हवा, पानी सब दिखा रहे थे। क्या वो पौधा इतना नाजुक था कि 4 दिन की लापरवाही का ऐसा अंजाम हुआ?

हरी हरन फिल्म माचिस। बोल गुलजार जी, तुम गए सब गया, मैं अपनी ही मिट्टी तले दब गया। संगीत विशाल भारद्वाज। हाथों पैरों में तन्हाइयां चलती हैं, मेरी आंखों में परछाइयां चलती हैं। किसी नाराजगी या गलत फहमी या चोट तकलीफ तौहीन के एहसास का जब इतना बड़ा असर हो जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ वेस्ट हो गया? बहुत कुछ जो अच्छा था, सच्चा था, वो जाया हो गया। हाउ कैन सो मच लव गो सो रॉन्ग, आप खुद से पूछते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि अगला भी उसी खामोशी में आप ही की तरह अपनी मिट्टी में दबकर खुद से यही सारे सवाल कर रहा है, और बीच में दिन महीने साल गुजरते जा रहे हैं। मैं थी आपके साथ एक बहुत ही खास गजल के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको। ये लाइंस मेरे दिमाग में पिछले 3-4 हफ्ते से मंडरा रही हैं, और अगर मेरे इस एपिसोड की बातों का आपकी जिंदगी से कोई तालमेल है आजकल, तो फिर इससे पहले कि अख्तरी बाई की बात आपके लिए भी सच निकले, प्लीज डेयर टू पिक अप दैट फोन एंड मेक दैट कॉल। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किये। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ई प्यार भी कैसन चीज है, कब हो जाला पता ही ना चले। प्यार के एक झलक पावेला प्रेमी अपना जान पर आ जाला। तू मानो या ना मानो मगर हकीकत है, तू मानो या ना मानो मगर हकीकत है। इश्क हर इंसान की जरूरत है, जरा मेरे महफिल में बैठकर तो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अभी मौन हूँ, आगे पता चलेगा कि कौन हूँ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूं आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहां आपकी फरमाइशें और आपकी पसंद की गीतें सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफर को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: नमस्कार
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं सुदीप बोल रहा हूँ, कोई जमा जिला देवघर झारखंड से। मैम
2: जी, जी कैसे हैं सुदीप जी?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया हैं।
1: उधर का मौसम क्या मिजाज है मैम?
2: मौसम का तो हाल मत पूछिए, अभी ही लग रहा है जैसे कि दोपहर का एक बज चुका हो।
1: जी जी, इधर भी वही हाल है मैम। दो दिन पहले बारिश हुई थी हल्की फुल्की।
2: हाँ, इधर भी वैसे ही हुई थी, बारिश तो नहीं है बोलेंगे लेकिन बूंदाबांदी हुई थी।
1: जी जी जी, आप सोनी मैम बोल रहे हैं ना?
2: जी जी। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: आज भी पुरानी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, कश्मीर की कली फिल्म का गाना सुना दीजिए।
2: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, गीत के बोल हैं इशारों ही इशारों में दिल लेने वाले।
2: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको आपके रेडियो रिम्यूम की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिम्यूम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
2: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: जी मैम
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंजी में।
0: हाँ, सर मास्टर ग्राम धनाव से।
1: जी, क्या हाल चल बा?
0: अरे हम भी तो ठीक है, बता में अपन बताई।
1: हमरो बढ़िया बा।
0: हाँ, दो बड़ी कड़क निकल बा।
1: हाँ जी, क्या कहल जाए, तो बातें अलग बाटे।
0: हाँ, एक बार फोन लगल फिर कट गई, बहुत बार लगे नी फोन जाननी।
1: उठे से पहले ही कट गए हटे।
0: हाँ हाँ, कहानी है भाई, कितना देरी अगर उठाए में।
1: और सब बताए?
0: सब ठीक है बा, लगन पगल सब बिता ले रही हमने के, अब काम में लगल बन जाए, दो चार पाँच गो लगन बा।
1: गाना कौन सुनवा दिया आज?
0: एगो हमारे आजम पोता बा, बड़ी तंग करता है, बहुत नंबर याद कर ले।
1: अच्छा,
0: बीपीएस जी से बातों कर ले रहे। गाना सुना दी नगीना मूवी के। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके।

0: के बाद सबसे पहले रवा को सुना के बाद और रेडियो रेंजी में रामा जी के और मनान भाई के और सगीर आलम बड़ान और जितना हमने के बन जाए रोशन टेलर में घना सुरन जाए सबकी सुना।
1: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल के।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी मैडम, हम गोपालगंज भोजपुरवा से बोल रहे हैं।
1: जी जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह पड़ेगा, भोजपुरवा।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं दुर्गेश जी आप?
0: जी मैडम, मैं जॉब करता हूँ यहीं से।
1: अच्छा,
0: अपना खुद का बिजनेस।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आपको?
0: जी हमको गाना सुनवा दीजिए भोजपुरी कोई अपने तरफ।
1: आवाज में सुनना पसंद करेंगे?
0: जी हम पवन सिंह का कोई सैड सॉन्ग हो।
1: पवन सिंह का सैड सॉन्ग कोई भी? और सुनवाना भी है?
0: जी हमारे दोस्त है जो अंशु सिंह है, हैप्पी सिंह है और बहुत सारे दोस्त।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
0: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माइक्रो, इसमें कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से हैं।
0: विकास कुमार, अंतापुर
1: जी। क्या हाल चाल है विकास जी?
0: है बढ़िया है जी। बहुत आज गर्मी है, काम करने का मन नहीं कर रहा है।
1: गर्मी तो काफी है,
0: आज बहुत धूप है, बहुत ज्यादा
1: हवा नहीं चल रहा है ना इसलिए।
0: और बताइए मैडम, आप कैसी है मैडम?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: अच्छा, अब खाना वाना खा लिया?
1: हाँ जी, खाना पीना हो गया है, खा के ही घर से आते हैं हम।
0: अच्छा,
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: आज गाना सुनवा दीजिए, वो गाना नहीं है क्या बोलते हैं, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, वही सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: अब मेरे दोस्तों को और जितने रेडियो रेंज में सुनने वाले हैं सबको शुरुआत, सबको।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: 6 बजे बजाइएगा ना
1: ये? शाम को चलेगा 5 से 7 के बीच में।
0: 5 से 7 के बीच में ना
1: जी? और रिपीट चलता है
0: 5 बजे से स्टार्ट कर दीजिएगा।
1: हाँ 5 बजे, ये नहीं बोल सकते कि 5 बजे ये स्टार्ट होगा, ठीक है? 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है। और सुबह रिपीट चलता है 9 से 11।
0: अच्छा, 9 से 11।
1: हाँ, और रात को चलता है 12 बजे से।
0: अच्छा,
1: 3 टाइम चलता है, आप उसमें से कभी भी सुन सकते हैं।
0: आज मेरी छोटी वाली लड़की बोल रही थी कि आपसे बात करने के लिए, तो हम तो आ गए काम पर, आज मैं छुट्टी में था।
1: अच्छा,
0: तो मेरे को ठेकेदार बुला लिया कि आ जाओ, सेंटरिंग वेंटरिंग ठोकना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इतना गर्मी पड़ता है कि आने का दिल नहीं करता है।
1: क्या करिएगा, गर्मी है ही ऐसा।
0: मजबूरी जो करे।
1: चलिए फिर बात होगी।
0: ठीक है ठीक है
1: ठीक है।
0: बहुत आज कोशिश की है आपका नंबर लगाते बहुत,
1: काफी सारे कॉल आते हैं ना, सबसे बात हो ही रही है 11 बजे से।
0: फिर मैं बजरंग बली के नाम लिए कि आज मैडम से बात हुआ कि नहीं होगा।
1: चलिए,
0: कोशिश की तो मैंने लग गया। ठीक है, बजा दीजिएगा। ठीक
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, मैं जो इसमें कॉल।

0: कितने दिन हुआ बात ये हुए, आज कैसे कैसे
1: चलिए अब जैसे जैसे करके आज हम भी बात कर लिए।
0: नहीं तो मैं तो आपके शो से भागने वाला था कि अब तो सोनी जी से बातें नहीं होती है।
1: नहीं भागिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि कब आने वाले हैं तुम्हें, कभी भी एंट्री मार सकती हूँ।
0: उसी इंतजार में तो कॉल कर दिए,
1: कॉल किया और बात हो भी गई। कहते हैं ना सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुड़ जाती है।
0: बात वही है,
1: बात वही है बस।
0: सही में मैं आज मैं करने वाला नहीं था, मैं सोचा कि चलिए एक बार करते हैं।
1: और बताइए साले साहब का हाल चाल कैसा है?
0: बस कट रहा है जैसे तैसे।
1: तो छुट्टी होगी आप लोग?
0: हाँ छुट्टी है, आप लोगों के सहारे कट रहा है।
1: तो गाना कौन सुनवा दे आज?
0: आज हमें सुनवा दे आप वो जो शिल्पी राज का है, लवर के धोखा दो एक बार मौका दो, अनारी के जैसा एकदम आप तो ढूंढ के निकाल ही देंगे।
1: नहीं जो पता है वो बता देते हैं, जो नहीं पता होता वो पूछते नहीं है कि किसके आवाज में है चाहे क्या है।
0: नहीं पता है वो भी सोनी जी से निकलने वाला नहीं है।
1: थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने से, तो भगवान भी मिल जाएंगे ये तो फिर भी गाना है।
0: जब जो गाना समझ में नहीं आता है वो भी बच जाता है, ये तो
1: पता है,
0: ये तो रोज की है, ये तो रोज की है
1: जी।
0: और सब
1: बढ़िया है।
0: आज भारती जी कहाँ है?
1: भारती जी भी यही है, बैठी हुई है पास में ही।
0: ठीक है भारती जी भी सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक होता है कि आपसे थोड़ी लगाव हो गया है। भारती जी भी सही है।
1: तो अब क्या पुराना आदत छूटते छूटते ना छूटता है?
0: तो आदत छुड़ा रहे क्या धीरे धीरे?
1: नहीं छुड़ा नहीं रहे, मतलब बात की बात है, छुड़ा कहाँ रहे अभी तो है ये है।
0: ना सही है। तो वो जिस दिन आप बीच में एक बार और बात किए थे कि आधे आप बात किए थे, आप आधे भारती जी करी थी, वो शो आपका नहीं चला?
1: नहीं चला है, तीन कॉल उसमें से बच गया है। चला तो था उसी दिन चला था। नहीं आपका गाना है और दो गाना और है जो कि आज तो शायद नहीं चलेगा, कल में चलेगा।
0: तो ठीक है हमारा ही गाना पेंडिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं।
1: अपने आदमी का है तो आदमी पीछे रखता है ना बाकी।
0: अब आज उस दिन का सुनाएंगे तो फिर आज का फिर
1: पेंडिंग में रहेगा,
0: वो सब हमें पता है।
1: पता है ना, फिर रिकॉर्डिंग हुई है तो चलेगी, बस आप सुनते रहिए।
0: तो आज पूरे आपका रिकॉर्डिंग है कि भारती जी भी है?
1: नहीं वो भी रहेंगी,
0: तो आधे आधे वो इसे सुनाएंगे ना मिला के, एक साथ तो दोनों नहीं चलेगा ना।
1: मेरा टाइम होगा शो का तो हम चले जाएंगे शो के टाइम में।
0: अच्छा
1: अच्छा ठीक है,
0: चलिए चलिए ठीक है, बहुत बात हुआ।
1: तो गाना आपकी प्ले कर रहे हैं?
0: ठीक, थैंक यू मैम,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद तुमने कॉल किया।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टूनशिप 90.4 FM में।
0: गाना सुनेगा मैम
1: जी? गाना तो सुनाएंगे। बता दीजिए नाम गाने का।
0: सैड सॉन्ग सुनना है।
1: सैड सॉन्ग कौन सा?
0: कोई सा जो अच्छा हो।
1: कोई सा भी तो नाम बता दीजिए, कोई सा भी गाना का।
0: याद नहीं है,
1: ऐसा थोड़ी होता है।
0: नीलकमल सिंह का सुना लीजिएगा।
1: नीलकमल सिंह का जी। और आप रवि बात कर रहे हैं? आप रवि बात कर रहे हैं?
0: हाँ
1: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा?
0: हाँ यही पे है दिया जी।
1: अच्छा जी, जी को चलिए।
0: और सुनने वालों
1: तो प्ले करेगा ना?
0: हाँ प्ले करिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कॉल किया।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: मैं अहमद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से। क्या हाल चाल है मैम।
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं।
0: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं। तबीयत पानी अच्छा है ना।
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: बहुत गर्मी पड़ रही है मैम।
1: गर्मी तो पड़ रही है, क्या किया जाए बताइए गर्मी से बचने के लिए।
0: गर्मी से बचने के लिए जितना हो सके अंदर रहे, घर के अंदर, और नींबू पानी पिया करें।
1: नींबू पानी तो नहीं पी सकते अभी, जहाँ है वहाँ
0: लेके जाइए ना मैम।
1: लेके जाएंगे फिर थोड़ा सा अस्कत हो जाता है ना।
0: बोतल में घर से ही बना कर लाया कीजिए और फ्रिज भी जो उसको रख दीजिए और दिन भर पिया कीजिए।
1: फ्रिज तो नहीं है, उससे
0: अच्छी है ना मैम। अंदर तो एसी है, फ्रिज की जरूरत नहीं है।
1: एसी है लेकिन अंदर सब कुछ पानी वगैरह नहीं जाता है ना, कहीं गिर उड़ गया तो फिर मशीन है, दिक्कत हो जाएगा।
0: कुछ नहीं गिरेगा, संभाल कर रखिएगा सर।
1: अब वो तो हम रख सकते हैं लेकिन अब एक हम लेके जाएंगे तो फिर और भी
0: और
1: है।
0: नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग ऐसा किया कीजिए, पानी पिया कीजिए।
1: पानी तो पीना है, जितना हो सके पानी पिए बिना, मतलब का घर से बाहर ना निकले बिना, जरूरी क्या।
0: बहुत गर्मी है।
1: गर्मी तो है ही, साथ में
0: मैं तो नींबू ला कर रख दिया हूँ। मैं डेली मैं खुद पीता हूँ और बच्चे को भी पिलाते हैं, अपने चार बार पिलाते हैं नींबू पानी सबको।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनवा दें।
0: गाना वो तो रेडियो पे बज रहा है, यही सुनवा दीजिए, सुना दे रहे हैं आपको। काफी के चैनल पर बज रहा है।
1: हीरो फिल्म का गाना है क्या।
0: जी जी
1: जी। पूरा तो समझ में नहीं आया, शायद तू मेरा जानो है, तू मेरा दिल भरवा गाना है ना।
0: जी जी मैम
1: जी।
0: मूवी से है आपका।
1: और सुनवाना भी है गाना।
0: सुनवाना तो जरूर है। सबसे पहले तो आपको, अख्तरी को, कमरान भाई को, और दिलीप भाई को, राघव जी को, और जो भी भिन्न भिन्न जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी।
1: चलिए
0: ओके, शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: आपको नमस्कार सुनिए
0: जी, लाल बहादुर बात कर रहे हैं।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक है, आज बहुत प्रयास किए तब लगा है।
0: ये फाइनली लग गया।
1: हाँ फाइनली तो लग ही गया। और सब ठीक है? और सब ठीक ठाक ना?
0: जी जी सब बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: ना फिल्म का
0: कौन
1: सा? देर ना हो जाए, आ जा रही हो मैजिक तेरा रास्ता देख लिया।
0: और सुनवाना भी है?
1: हाँ ऋषि कपूर सुरेश सुरेश राठौड़ का उसमें आवाज भी है। यही गाना सुना दीजिएगा हमारे स्वच्छता कर्मी जितने में लगे हैं ग्रामीण से उनको और हमारे इंजीनियर सरस्वती बाबा और इनके प्रसाद।
0: तो प्ले करे गाना आपकी?
1: ठीक है
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: जी नमस्ते बहादुर
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में
0: जी।
1: कैसे हैं बहादुर जी?
0: ठीक है, आता बताइए।
1: अभी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो कुछ ही भी नहीं हो रहा है, गर्मी चल रहा है।
1: तो नाश्ता हुआ?
0: जी जी, खाना है, नाश्ता हो गया।
1: चलिए बढ़िया है। स्वास्थ्य बताइए, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं आपके?
0: सब कुछ ठीक है।
1: चलिए बढ़िया का बात है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: नहीं, साधन दुल्हन सजाएंगे
1: जी। और सुनाना भी है?
0: जी जी, आनंद श्री
1: तो प्ले करे गाना आपकी?
0: जी जी
1: जी। गाना डेडिकेट भी करिएगा
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी चॉइस में कॉल किया।

मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है, और चुप चुप लगती है ओह तन बड़ा।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से हैं?
0: ऋषि,
1: कहाँ से बात कर रही हैं? कुकू
0: पहचानपुर जी।
1: एक बार और बताइए कहाँ से बात कर रही हैं?
0: पहचानपुर जी।
1: तो क्या करती हैं खुशी जी आप?
0: पढ़ाई करती हूँ।
1: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
0: नाइन्थ क्लास के।
1: नाइन्थ क्लास की पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
0: अच्छी चल रही है, अभी छुट्टी करी है। और छुट्टी चल रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो छुट्टी में कहीं घूमने गई कि नहीं?
0: नहीं नहीं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: बाग में कोयलिया भोरे भोरे, वही कवाली सुनना है।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ, मेरी मम्मी को और चाची को, मेरी बहन को और मेरी अंक को।
1: चलिए तो प्ले करें गाना।
0: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल किए।
2: क्या बात है।

क्या बजावती है, यही कही के बुद्ध, यही कही के बुद्ध तेरे मुंह के बल, अरे यही कही के बुद्ध, यही कही के बुद्ध तेरे मुंह के बल, देखो आए गए प्यार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: सलामकुम।
1: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
0: हाँ, किस्मत बोलते जी, सिमरा से
1: जी। क्या हाल चाल बताता जी?
0: था बाबू
1: सब बढ़िया बात। हाँ, कहा तो नहीं, कैसे बानी?
0: ठीक बनी बाबू,
1: ठीक बनी।
0: ठीक बना ना, घर सब ठीक बना?
1: हाँ जी, सब कोई बढ़िया बाटे, घर भी हम बढ़िया बनी।
0: ठीक बनिए चाहे।
1: ठीक बनो?
0: हाँ सब ठीक बना, जुम्मा ना।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक बा।
0: कवाली सुनाइए बढ़िया अपना मन से।
1: अच्छा चलिए ठीक बा, फिर
0: ठीक बा।
1: ठीक बा, तो प्ले करता नहीं रहा कवाली?
0: ठीक बा,
1: ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: पठानपट्टी
0: से कौन बात कर रही हैं आप?
1: रोशनी।
0: क्या हाल चाल है रोशनी जी?
1: ठीक है, अपने बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: नाश्ता हो गया?
0: हाँ जी, नाश्ता हो गया। आपका हो गया है? बताइए। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको? वालेकुम सलाम।
1: क्या हाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया है। वो बताइए कैसन बने?
1: ठीक बने सर। आज तो गाना सुना दे बने, बहुत अच्छा लगल सुन के।
0: चलिए अच्छा बात पर, क्या अच्छा लगल है? सोनी बात करता नहीं?
1: सोनी में। और सब मैम?
0: सब बढ़िया बा।
1: सब बढ़िया बा। तो ठीक बानो?
0: हाँ जी बढ़िया बा। और बताई राहुल, बढ़िया बानो?
1: हमने को बढ़िया बने सर। आज गाना भोजपुरी सुना दी, तोरा पगली की दुनिया के मेला में।
0: और गाना सुनवाऊ के बा कोई के?
1: जी मैम।
0: शादी नाम लेवे के चाहे?
1: हाँ मदयादिन वालो सब नाम रानी और देवर वालो अजीज सफीक मिलो।
0: गाना प्ले करता नहीं?
1: ठीक बा मैम।
0: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल करी।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: मैं बोल रहा हूँ जिला गुना से, गोपाल ओझा।
1: जी कैसे हैं गोपाल जी?
0: बढ़िया है मैडम जी, आप कौन बोल रही हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं।
0: जी जी मैडम जी,
1: जी
0: दो हफ्ते में लगाया मैंने आपसे, दो हफ्ते में बात हो रही है मेरी तो।
1: चलिए बात

0: छत्तीसगढ़ से ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धाकड़ जी है, रामधन धाकड़ जी है।
1: तो प्ले करेगा ना?
0: प्ले कर दीजिए मैडम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते
2: जी। करे देखता रहूं क्या

0: जोकर।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन भी हिंदी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों, हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल पे एक छोटा सा ठहराव, लेकिन यह अलविदा नहीं बल्कि अगली मुलाकात तक का एक प्यारा सा विराम है। आज के हेलो माय चॉइस

इसमें हमने आपकी फरमाइशों के बहाने सुने कई सुरीले गीत, साझा किए कुछ प्यारी यादें और बिताए कुछ खूबसूरत पल। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन वादा है कि फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी और फिर सजेगी आपकी पसंद की गीतों की महफिल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पल को संगीत की तरह महसूस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी की हर धड़कन में एक धुन छुपी होती है, बस उसे सुनने और गुनगुनाने की देर होती है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे सोनी। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे आपकी पसंद और फिर सजाएंगे संगीतों से भरी एक नई महफिल। तब तक सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, अपने जिले की आवाज़। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उझला।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: चित्रगुप्त सिद्ध चालीसा रोमांच प्रस्तुत करते हैं केके सिंह, केके रिकॉर्ड मास्टर बशारत को।

0: कर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।